0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63rd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग, प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है, यूनिट नंबर 2120-3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
1: एक बार फिर तुहाडी सेवा दे विच हाजिर हां। आपां ब्रेक तो पहला शब्द सरवण कर रहे सां, कुछ पंक्तियां। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, ए जो दुनिया सहर मेला दस्तगीरी माहे। आओ ए मनुख अपने हिरदे की खोज कर, सेल्फ एनालिसिस कर, विचार अपने आप नू फोल कि जे तू अपने कर्मां दा, अपने नेता प्रति व्यवहार दा निरीक्षण करेगा तेरी जड़ी जिंदगी है बड़ी सुखावी गुजरेगी, तेनू कोई परेशानी नहीं आएगी, तेरे कोल सारिया ही प्राप्त जुगतियां तेनू तेरी अपनी समीक्षा ही तेनू प्रदान कर देगी। अज असी विचार जड़ा करना है वह इसे गल ते करना है, विवेक, बुद्ध ते ज्ञान। क्योंकि इस तो पहला जो असीं सरवण कर रहे सां मन बुद्ध इन्हां चीज़ां ते कर रहे सां, इस वक्त होरे सारे ही जिहड़े आपां तुहाडे नाल विचार करते हैं, ये नौजवान पीढ़ी के जिहड़े सवाल हुंदे आ उन्हां नूं एड्रेस करन दी, उन्हां दा जवाब देन दी, उन्हां उलझनां नूं सुलझाण दा यतन करन दी कोशिश करते हैं। असीं क्योंकि इसे पंक्ति चांदा है, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, ए जो दुनिया सहर मेला दस्तगीरी नाहे। क्योंकि जिस इस जगत दे विच इस वक्त तो तू विचर रहा है, ए एक टेंपरेरी जी, उस तरह की जिस तरह एक जादूगर एक मदारी एक सर्कस दे विच एक खेल होंदा है ते वो कुछ घंटियां दा होंदा है, कुछ पलां दा होंदा है, कुछ मिंटां दा होंदा, खत्म होता है। इत्थे परमानेंट कोई चीज नहीं है, इत्थे इस नूं फड़ के बैठिया कोई नहीं रहेगा। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫਰੀਦਾ ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇ ਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਾ ਜਗ ਹਯਾਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਥਿਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇ ਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਤੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਲੱਤ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਰਤਣੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਪਾਉ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਤੇ ਪੱਪਿਨ ਤਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜੀ ਸੋ ਪੈਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਪਾਓ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਆ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਮਿਲਣੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਆਪਾਂ ਬਾਰਾਂਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਾਦੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਪੰਕਤੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,

हाँ बिल्कुल, एक पंक्ति मैनू चेते आ रही है। हर मिलने नू मन लोचदा, हर मिलने नू मन लोचदा, करम मिलावन हार। मन दे इच्छा तो है हरि नू मिलन दी, अकाल पुरख नू प्राप्त करन दी, उसते दीदार करन दी, पर उस नू गल्लां दे नाल नहीं, केवल रब रब करन दे नाल नहीं, किते चौकड़ी मार के, जिस नू असीं सिमरन दा नां दित्ता, सिमरन दी असल व्याख्या कुछ हो रही, उहदे नाल प्राप्त नहीं होना, करम नाल। रब मिलने नू मन लोचदा, करम मिलावन हार। हर मिलने नू मन लोचदा, करम मिलावन, करम ही मैनू उहदे नाल मिला सकदा, क्योंकि 12 माह की शुरुआत भी होंगी है ना, किरत करम के विछड़े कर कृपा मेलो राम। अपने कम्मा करके, अपने कर्म करके विछड़े हैं। सो इसे करके बाणी दे विच यानी होर भी जिक्र आता है, जपजी साहब का ही पाठ करते हैं, करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर। असी अपने अमलां दे करके, इतने कर्म जिहड़े ने वो कोई इशारा साढ़े जिहड़े वो कर्म आवागमन दे उन्हां दे नाल नहीं है, अमलां दी गल है। इन्हां अमलां करके जिहड़े साढ़े एक्शंस ने, इन्हां दे करके ही असीं दूर ते नेड़े आ, इन्हां नाल ही प्राप्ति हुंदी है। जदों ये गल आंदी है ना कि हर मिलणे नूं मन लोचदा, करम मिलावण हार, करम ही मिला सकते हैं, अमल ही मिला सकते हैं। बाणी च भी जिक्र आंदा, राती रुती थीती वार, पौण पाणी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसा। इस धर्मसाल दे विच असीं अमल करने हैं, धर्म कमाउणा है, ते फिर सानू वो लक्ष्य प्राप्त होएगा जिहड़ा असीं अज विचार कर रहे हैं, विवेक बुद्ध ज्ञान, ये चीज़ां प्राप्त होंदियां ने। किवें होंदियां ने? गुरु साहब दसते आ, गुरु साहब सानू कहिंदे आ, जदों सरम खंड यानी कि मेहनत दे उस खंड दे विच पहुंचदे हैं, ते फिर की होंदा, तिथे काड़िया सुरत मत मन बुद्ध। इथे सारिया चीजा जिहड़ियां ने, साड़ी सुरती, साड़ी मत, साड़ा मन बुद्ध, इन्हां दी सफाई हो जाती है, इन्हां दी काड़त कड़ी जाती है, ते इन्हां नूं वाचन की कोशिश करते हैं एक ही ने, क्योंकि जिन्हें भी फोकट कर्म ने गुरमत ने उन्होंने रद्द कर। गुरु अर्जन पातशाह कहते हैं, पाठ पढ़ियो और वेद विचार्यो, न्योल भयंगम साधे। मैं बतेरे पाठ कर रहे, असि अखंड पाठ साहब भी करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की ताबे च बह के, कई लोग तो इतने तक कहते हैं इको सिटिंग दे विच, इको चौकड़ी दे विच पूरा अखंड पाठ साहब कर रहे। पाठ पढ़ो, फिर ज्ञान दियां पुस्तकां, वेद विचारियो, ज्ञान नूं भी विचार कीता, ते फिर अनगिनत प्रकार दे, जिस तरह योगी आसन लगांदे, असीं वी आसन लग, जिहड़े अजकल हुण गुरद्वार गुरु घरां दे विच वी योग मत नूं असीं लिया, ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਸਨ ਨੇ ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ?
पंच जना से संग न छुटके हो अधिक अहमुद बाधे। यानी कि जेडे विकार ने, पंज असी मेन कहते हैं ना, विकारा तो छुटकारा ही नहीं होया, सगों होर होमै वधी। पंच जना स्यों संग न छुटके हो अधिक अहमुद बाधे, होमै होर वध गई। प्यारे गुरु अर्जन पातशाह कहते यार हाव की पंक्ति इन विद मिलन न जाई। जे सकाल पुरख नूं मिलना है ना, आप पहला विचार करिए हर मिलने नूं मन लोचदा, करम मिलावन हारो किहड़े करम ने, ओह करम नहीं फोकट करम, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, इन्हां सारिआं नूं गुरु साहब ने रद्द कर दिता। प्यारे इन विद मिलन ना जाई, मैं किए करम अनेका, इहो जे अनगिनत करम मैं कर चुका। हार पर्यो स्वामी के द्वारे, हार के थक के निराश होके मैं उस अकाल पुरख की शरण आया, ते मंग की कीती है दीजा बुद्ध विवेका, एक मैनू विवेक दे एक मैनू बुद्ध दे। हुण आपां अजकल दे हालात दे विवेक की होंदी है, विवेक होंदा लॉजिकल थिंकिंग,

अमृत छकाया गया चुल्हे ले, फिर जो उस बाटे दे विच अमृत पैंदा है, वो सारे नूं बाटा मूंह नाल ला के पहले एक पासों जांदा है, फिर दूजे पासे वापस आंदा है, ताकि वो सारे दे विच उस सुच प्रिश्ता पहले खत्म हो जाए। ते उन साडे च अज सानूं कहिंदे असीं विवेकी हां। विवेक दा अर्थ गुरु साहिब दस रहे ने एक सर्वोच्च योग्यता है जो एक व्यक्ति नूं सही अते गलत, सच अते झूठ, लाभदायक अते बेकार विच फर्क करना सिखाती है। इस नूं बुद्ध विवेक कहते हैं, लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि जिसनों आप जजमेंटल कहते हैं। ये उस तरह का जजमेंट नहीं किसी बारे जाए, यानी कि जरा सही ते गलत दे विच फैसला कर सके मन दी ओ, क्योंकि जानकारी होना होने की होर गल, पर जानकारी होंदिया होया भी टुकमें समय हालात अते उस जानकारी की वरतों किस हद तक की जानी है, ए या कीती जानी चाहिदी है। सो एक इन्हां सभनां नूं संतुलित बैलेंस करन बारे है। विवेक विच नैतिकता, दूरदर्शता जिसनूं आपां दूरदृष्टि कहते हैं, स्वय निरंतरता, सेल्फ डिसिप्लिन जिसनूं आपां कई वारी ये सारा कुछ उहदे च आ जांदा ना, पै के चरण कर भाव के लोयण सुरत करे नानक कह सियाणी है वो कंत मिलाओ। पै के चरण जिस मंजिल से जा रहे हैं पैरां नाल ही चलना है ना, एक वो डिसिप्लिनड होवे, वो जिंदगी दे ट्रैक तो इधर उधर टपटके ना, उहदे च अनुशासन होवे, किरदार होवे, जति सती वाली अवस्था होवे जिस दे विच स्वै नियंत्रण होवे, दृष्टि जिहड़ी आ विशाल होवे, कितना गल्ले जोग ना होई एक दृष्ट कर संसार जाने जोगी कई है सोई। ए बाणी सानू साफ साफ ए चीज दसदी है। ए सारा कोई साड़ी यानी कि इस दे विच मनुख दे अंदर हमदर्दी भी शामिल है। एक विवेकशील, एक विवेकी व्यक्ति, पुरुष, परसन दी स्थिति जिहड़ी आ जल्दबाजी दे विच नहीं, भावुकता नाल नहीं, प्रतिक्रिया करन दी बजाए, यानी कि जे कोई सानू कुछ माड़ा चंगा कहिंदा है इमीजिएट साडा रिएक्शन नहीं हुंदा विवेक विवेकी बंदे दे विच, उसने उस ते विचार करना है, उन्हें प्रतिक्रिया देनी या नहीं देनी, किन्नी देर बाद देनी है, भविख ते समाज लई नतीजियां दा विश्लेषण करन दे आधार ते फैसले लेना है। ज्ञान दी गल अगर करिए, ज्ञान नूं विचारीए तां ज्ञान उह सब कुछ है जो सानू अध्ययन करन नाल, पढ़न नाल, अनुभव करन नाल, निरीक्षण करन नाल, जिस नाल कहिंदे ना बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी, जां दूजियां तो सिखदे हां इह तत्थां नाल जानकारी, सिद्धांत अते डाटा जिसनूं आपां कहिंदे आ, जानकारी उस समगरी पुस्तकां दा संग्रह, इह सारा कुछ जदों असीं इक किताब पढ़दे हां, असीं धार्मिक पुस्तकां पढ़दे हां, लेख पढ़दे हां, जां किसी विशे ते जानकारी इकट्ठी करदे हां, तां इह साडा ज्ञान बन जांदा है। जो जानकारी असीं भावें इतिहास चों लैंदे हां, भावें जीवन दे विचों दूजियां नूं वाच के दूजियां दे प्रतिक्रम नूं, इह सारा कुछ जिहड़ा जानकारी बन जांदी है। सो इस नूं भी कई बार मतलब असीं ज्ञान कहिंदे हां, पर

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो। ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130, 4818 वेस्ट विंड ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा दवाई देना अपॉइंटमेंट ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
1: ये है सत्यार्थ प्रकाश और ये है महर्षि दयानंद। अब देखो इनके इस चित्र को देख कर आदमी कटका मर जाए इसके ऊपर। अकबड़ा विद्वान था, ओहो बड़ी साधना करता होगा। अब इसके ज्ञान को दिखाएंगे आपको। ये कहां से छपा है, ये सत्यार्थ प्रकाश है। इसके विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण ही संवंत है, यानी वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाणों के साथ इसकी रचना की गई है। किसने की है, श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद के आग गए इतनी लंबी फीत, और फिर महर्षि दयानंद और फिर सरस्वती और स्वामी विरचित है। अब इसके फीत इतनी बड़ी ला दी श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इस स्वामी जी द्वारा लिखी गई है पुस्तक, रची गई है और प्रकाशित है वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से। ये छपी कहाँ है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक, यहां से छपी है। अब इसमें आपको सातवें समोल्लास में ले चलते हैं। ये है सप्तम समोल्लास यानी सातवां समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश है, पृष्ठ 154 पर। इस प्रकाशन के 154 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया कि प्रश्न ईश्वर साकार है वा निराकार, उत्तर स्वामी दयानंद जी का के निराकार है। और 155 पृष्ठ पर स्वयं ही ये स्वीकार कर रहे हैं, साकार भी बता रहे हैं इसको। किसी ने प्रश्न किया स्वामी दयानंद जी से, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए वा नहीं। स्वामी दयानंद जी कहते हैं करनी चाहिए, तो प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा, यानी कोई साधना भक्ति करेगा भगवान कि क्या उसका पाप नाश कर देगा। स्वामी जी कहते कि नहीं, साधना उपासना से पाप नाश नहीं होता। अब प्रश्नकर्ता कहता कि फिर स्तुति प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है, जो भगवान पाप पर नाश नहीं कर सकता, क्योंकि पाप कर्म से दुख होता है और दुख निवारण भगवान कर नहीं सकता क्योंकि पाप नाश नहीं कर सकता, तो भगवान की भक्ति की क्या आवश्यकता है। अब स्वामी जी इसका उत्तर देते हैं, उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता वो क्या फल है फिर, स्वामी दयानंद जी का उत्तर देखियो, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निराभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा और मेल उस निराकार से मेल कैसे हो जाएगा, या स्वयं कह रहे हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है उपासना से और पाप कटते नहीं। अपने आत्माओं ये ऐसे महर्षि थे, इनको ये नहीं मालूम तुम 154 पृष्ठ पर निराकार बता रहा है, 155 पृष्ठ पर कह रहा है परमात्मा परब्रह्म से मेल हो जा और उसका साक्षात्कार हो सकता है, फिर साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा। तत्व ज्ञान हीन प्राणी ऐसी उबाई ही बकते हैं जिनका कोई आधार ना हो। अपने आत्माओं जैसे एक इसमें ये प्रश्न ये भी आया है कि परमात्मा साधना भक्ति करने वाले के पाप नाश नहीं करता, पाप अक्षमा नहीं करता, और फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा कि फिर भक्ति किस लिए करें, स्वामी जी कहते हैं उससे और लाभ हो जाता है। वो क्या लाभ होता है कि पाप तो नाश होता नहीं भक्ति से, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होता, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके दर्शन कर लेता है। अरे भले आदमी, निराकार का साक्षात्कार कैसे होगा? जैसे बच्चा इंटरव्यू देने जाता है, वहां साक्षात्कार होता है उसका, इंटरव्यू लेने वाले का और देने वाले दोनों सामने साक्षात होते हैं, साकार होते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा का साक्षात्कार करना भी उसको साक्षी, उसको सामने स्पष्ट देखना होता है, और निराकार दिखाई दे नहीं सकता। अब थोड़ा सा एक प्रसंग और बीच में आ गया कि परमात्मा अपने भक्तों के पाप नाश करता है वा नहीं, ये कंसेप्ट क्लियर करके फिर निराकार साकार की स्थिति स्पष्ट करेंगे। देखिएगा, ये है सप्तम समुला से चल रहे हैं और सत्यार्थ प्रकाश है ये, इसके 163 पृष्ठ पे यहां देखिएगा, यहां और स्पष्ट कर दिया है। प्रश्नकर्ता कहता है कि ईश्वर अपने भक्तों का पाप क्षमा करता है वा नहीं? उत्तर स्वामी जी कहते नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की क्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। फाइनल कर दिया इसने तो कि पाप नाश नहीं करता, जिसे कर्म करेगा वैसा फल देगा। अपने आत्माओं, परमात्मा की महिमा, परमात्मा के गुण पवित्र वेदों में लिखे हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति कहे, कोई प्रश्न करता है किसी को, जिसने अपने मकान के सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है MBBS MS, और उससे कोई पूछता है कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो सामने वाला जो इतना लंबा बोर्ड लगाए बैठा है, दुकान खोल रहा है डॉक्टर की, और वो ये कहे कि नहीं, औषधि खाने से रोग नाश नहीं होता। अब सामने वाला कहेगा फिर औषधि खाने की आवश्यकता क्या है, जब रोग नहीं कटे, रोग ही नहीं कटेगा। तो वो सामने वाला, वो नकली डॉक्टर वैद्य जवाब क्या देवे कि औषधि खाने से रोग तो नाश नहीं होगा लेकिन पहलवान बन जाएगा। तो क्या वो डॉक्टर है, क्या वो वैद्य हो सकता है? वो तो कोई गुटी लाए बैठे हर नकली बोर्ड ला रहा है। जो ये शब्द कहेगा कि औषधि खाने से रोग नहीं कटे, और फिर वो औषधि खानी चाहिए किस लिए, क्या लाभ है कि पहलवान बन जाएगा, रोग कटे नहीं, मृत्यु हो जाए, पहलवान तो बन लिया फिर। तो ऐसे यदि दूसरा उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे किसी ने बोर्ड लगा रखा है थोक साबुन विक्रेता, और साबुन की पूरी दुकान भर रखी है उसके साबुन के टुकड़ों की, और उससे कोई पूछता है क्या साबुन कपड़े का मैल नाश कर देगा, तो सामने वाला दुकानदार ये कहे कि नहीं, साबुन लगाना तो चाहिए पर वो कपड़े का मैल नाश नहीं करेगा। फिर सामने वाला स्वाभाविक बात है कहेगा, प्रश्न करेगा, फिर साबुन प्रयोग करने का लाभ क्या, जब साबुन कपड़े का मैल नाश नहीं कर सकता तो क्या यूज है उसकी लगाने की, क्या लाभ है? और वो नकली फिर उत्तर दे कि कपड़े को मजबूत बना देगा। साबुन कपड़े का पाप मैल नाश तो नहीं कर सकता लेकिन मजबूत बना देगा। क्या वो व्यक्ति साबुन से परिचित है? इससे सीधा उसने लकड़ी के गुटके रखे सारे और मूर्ख बना रहा दुनिया ने कागज में लपेट के। तो ये सिद्धांत था इस महर्षि दान सरस्वती का, जो आर्य समाज का प्रवर्तक कहलाता है। इसको कैसे भी पता नहीं था वेदों का और भगवान का। अब यजुर्वेद में वो स्वयं अनुवाद कर रहा अपने हकर कमल से, और यजुर्वेद में, क्योंकि वेद जो है परमात्मा का विधान है, परमात्मा की गुण है उसके अंदर, वो ऐसा ऐसा करता है, और जिसने वेदों के विरुद्ध अपना सिद्धांत बताया है वो अज्ञानी व्यक्ति था, वह वेद ज्ञानहीन था। अब देखिए वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद।

करने वाले मित्र आप। अब यहां इसने मित्र शब्द प्रयोग कर दिया, यहां परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा, और मैंने यहां लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के एवजनम, एनस माने अपराध के, एवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो, मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस माने अपराध के, एवजनम माने विनाश करने वाले हो, पितर कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस माने अपराध, ये अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधासन लिखा है, अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो, अपने किए हुए अनस्य माने पाप के, अनस्य कहो, अनस्य का अर्थ पाप कहो, अनस्य माने अपराध कहो, अनस्य माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है, अनस्य माने पाप के दूर करने वाले, अवेदनम माने नाश करने वाले, अवेदनम विनाश करने वाले हो, अवेदनम माने विनाश करने वाले हो, अनस्य अनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी अवेजनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं या करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूं या करूं, उस सब अनस्य माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवेजनम माने नाश करने वाले हो। अब यहां मित्र शब्द लिख दिया इसने, या परमात्मा ने लिखा जीव को मूर्ख बनाने के लिए। अब देखो इन्हीं के शब्दों में, अब इसी महर्षि दानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में भगवान के नामों की महिमा का की व्याख्या की है, विवरण दिया है, उसी में आपको दिखाते हैं मित्र माने परमात्मा होता है। ये देखिए इन्हीं के शब्दों में, यह प्रथम समुल्लास है और पृष्ठ नंबर 18 पर, सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ नंबर 18 पर, यहां देखिए इन्हीं के विचारों में महर्षि दानंद जी लिख रहे हैं, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो जहां इसने मित्र शब्द लिखा है वहां हम लिखेंगे हे परमेश्वर आप, बस ही इसी बात। अब मित्र मान इसने यहां लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में, अनुवाद में गड़बड़ करने की चेष्टा की कि पढ़ने वाला न्यू सोचेगा कि ये तो मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं। ऐसा ही हमारे साथ, जैसे हमारा और इस आर्य समाज के आचार्यों का सन 2004 से वाद विवाद चल रहा था, समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से हम लिखते थे, वो भी उत्तर देते थे, जहां इस दास ने ये लिखा था कि महर्षि दानंद को वेदों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, ये कहता है कि पाप नाश नहीं कर सकते, इस छात्र में समुल्लास में लिखा है भगवान की साधना से पाप नाश नहीं हो सकते, जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट लिखा है कि भगवान घोर पाप का भी नाश कर देता है। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि रामपाल झूठ बोल रहा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 के अनुवाद में महर्षि दानंद ने मित्र के बारे में लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं, यानी जनता को मूर्ख बनाना उनका उद्देश्य था, लेकिन वह भूल गए कि अब आज से 150 वर्ष पहले वाला भारत नहीं है। अब हम स्वयं शिक्षित हैं, परमात्मा ने दया बख्शी है, प्रत्येक भारतवासी आज अक्सर ज्ञान युक्त है, और इनसे जिसा भी अनुवाद बना इन्होंने अनुवाद किया है, और इनसे नहीं अनुवाद हुआ वो ये दास करेगा और बता रहा है, क्योंकि सूक्ष्म वेद में वो पहले ही लिखा परमात्मा की वाणी में। अब देखो यही यजुर्वेद 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, 8वां अध्याय, और ये हमने पढ़ा 13वां श्लोक मंत्र, इसके यहां पर ये अनुवाद किया स्वामी जी ने, तो यहां लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, हम यहां लिखेंगे ये सब के उपकार करने वाले परमेश्वर आप, दान देने वाले के अनस्य माने अपराध मानी यानी पाप के विनाश करने वाले हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो,
पिता के किए हुए।

0: सामान्य अपराध के नाश करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले यानी नाश करने वाले हो। एक तो इस महर्षि दानंद की या थूरी ये विधान गलत सिद्ध कर दिया वेदों ने कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, जबकि वेद स्पष्ट करते हैं परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर सकता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि महर्षि दानंद पूर्ण रूप से वेदों से अपरिचित था, अज्ञानी था। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा साकार है व निराकार। ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, वेद बताते हैं परमात्मा साकार है और मनुष्य सदृश है, सशरीर है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 महर्षि दानंद जी द्वारा अनुवादित है। ये प्रथम मंडल है, महर्षि दानंद सरस्वती का अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस। अब इसमें स्वयं स्वामी जी ने स्टार्ट किया है जो प्रथम मंत्र प्रथम सूक्त और इसका प्रथम मंडल प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है और इस अग्नि शब्द को इन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि जहां यहां अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण ये हैं कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्वर्ण के इंद्र आदि अनेक नाम होते हैं। इत्यादि सत्पथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दो अर्थों का वाची है। मैं अग्नि शब्द प्रजा शब्द से भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्य आचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि माने ईश्वर का ग्रहण होता है, अग्नि माने ईश्वर। और इसी आधार से स्वामी जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2 इसमें अग्नि शब्द है, इसका अर्थ इन्होंने स्वयं कहा है अग्नि माने वह परमेश्वर दूसरे में। अब ये तीसरा मंत्र है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 3, इसमें भी अग्नि अग्नि ना एव अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर। चौथे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर और पांचवें में अग्नि शब्द नहीं है। छठे में देखिएगा, छठे में अग्नि माने हे परमेश्वर और फिर सातवें में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 7 में अग्नि माने हे उपासना के करने योग्य परमेश्वर। अब आठवें अग्नि शब्द नहीं है, नौ में अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। अब पुण्यात्माओं, अब स्वामी दानंद जी खुद अग्नि माने अग्नि या अग्नि का अर्थ कर रहे हैं कि अग्नि माने वेदों में जहां भी ये है वो परमेश्वर का ग्रहण होता है। और सत्यार्थ प्रकाश में भी भगवान के नाम को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने अग्नि माने परमेश्वर ही शब्द का किया है। अब फिर दानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश में भी देखते हैं अग्नि माने ये क्या बताना चाहते हैं। देखिएगा ये सत्यार्थ प्रकाश है और ये कहां से छपा है, ये आपको बताया था वैद्य केती मंडल, ये इसका प्रकाशक है। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके पृष्ठ नंबर 16 पर देखिएगा सत्यार प्रकाश, ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ओम और अग्नि आदि नामों का अर्थ मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है, यानी अग्नि माने जहां भी हो परमेश्वर समझना चाहिए मुख्य तौर पर, मुख्य तौर पर। अब 17 पे है, प्रश्न नंबर 17 पे प्रथम समुल्लास में, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। वाह, इस महर्षि दानंद जी ने केवल डेड वेद का अनुवाद किया, उसके बाद इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद शेष जो ढाई वेद थे वो इन्हीं के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन के आधार से, हिदायतों के आधार से अन्य आचार्यों ने अनुवाद किया है। देखिएगा उनमें से एक सामवेद अनुवाद किया गया, ये यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठा ही जिल्द किया गया है। अनुवाद करता इसमें भिन्न भिन्न है। हम सामवेद का अनुवाद करता देखते हैं, ये कहां से प्रकाशित है ये देखिए। प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली दूरभाष इतना। प्रकाशक हैं पंडिता राकेश राणी, अध्यक्ष दानंद संस्थान 2286 आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली से। अब इसके अनुवादकर्ता ने कितना अच्छा अनुवाद किया है, स्पष्ट किया है। सामवेद भाषा भाषम ये प्रथम अध्याय है और इसके देखिए मंत्र, इसके प्रथम मंत्र में अग्ने माने हे ईश्वर, दूसरे मंत्र में अग्ने माने हे परमेश्वर और तीसरे मंत्र में अग्नि माने ईश्वर को, यानी अग्नि माने ईश्वर, और चौथे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें मंत्र में अग्ने माने हे ईश्वर और छठे मंत्र में अग्ने माने हे ईश्वर और सातवें मंत्र में अग्ने माने हे परमेश्वर, जहां भी अग्ने शब्द है, और आठवें में अग्ने माने हे ईश्वर और नौवें में अग्ने माने हे परमेश्वर, जहां भी दसवें में अग्ने माने हे परमेश्वर, जहां भी आप देखोगे अग्ने माने हे परमेश्वर, अग्ने माने हे परमेश्वर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने काम की बात पे। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद में जहां भी अग्नि शब्द है वो मुख्य तौर पर परमेश्वर का ग्रहण होता है। अब महर्षि दानंद जी का अपना विधान, अपना अनुभव, अपनी सोच, वो अज्ञान सोच थी कि परमात्मा निराकार है, जिससे उसने वेदों का नाम लिख दिया कि मैंने वेदों को पढ़ा है और वेदों में कहीं भी परमात्मा साकार नहीं लिखा है। सत्यार प्रकाश की रचना करती कि मैंने वेदों के आधार से आसान करके, वेदों को समझ कर इसकी रचना की। सत्यार प्रकाश की इसमें जो लिखा वो वेदों अनुसार है कि परमात्मा निराकार है। अब वेद क्या बताते हैं, परमात्मा सशरीर है, वह मनुष्य दृश्य है। ये यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है, ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य यानी संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है। महर्षि दानंद इसका राइटर नहीं है वेदों का, केवल अनुवादक है, जैसे गीता जी का अनुवादक बहुत से हैं।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th Street साउथ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
1: मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागंज नई दिल्ली से। पांचवें अध्याय का प्रथम मंत्र, ये है पांचवा अध्याय। इस पंचम अध्याय आरंभ है, इसके प्रथम मंत्र में, ये प्रथम मंत्र में लिखा है, अग्ने तनुरसी विष्णवे त्वा सोमस्य तनुरसी। दो बार लिखा है तनु माने शरीर। अब इन्होंने अनुवाद यहां गलत कर दिया। अपनी अज्ञान अनुभव को ऊपर रखने के लिए वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर दिया। क्या अनर्थ किया स्वामी जी ने? हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। बताया ये क्या अर्थ है इसका? सारी उम्र पढ़ गयो, इसका भावार्थ भी समझ में आ जाए। कहना के हिसाब है यहाँ पर, क्योंकि इसने परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रखा था अपनी अज्ञान सोच से। वेद बता रहे हैं अग्नि तनुरसी विष्णु सोमस्य तनुरसी। तनु माने शरीर, अग्नि माने परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपका शरीर है। असी माने है, तनु माने शरीर। ये स्पष्ट खोज लिख रहा है, तनु माने शरीर, असी माने है, अग्नि माने हम लिख जाएंगे परमेश्वर, जिसका वास्तविक अर्थ बनता है अग्नि तनुरसी। परमेश्वर से शरीर है। और यहां देखो, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते ये लोक त्रयमावि से विवर्ति। अब ईश्वर है वो सबका धारण पोषण करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है, वो परमेश्वर वो सबका धारण पोषण करने के लिए भी उस पर सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, उस अमर पुरुष का शरीर है। अपनात्मा जहां भी ये जो महर्षि कहलाते थे, ये नकली डुप्लीकेट ही ज्ञान था नहीं ऋषि इसका वेदों का, इन्होंने इन वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया। इसका एक प्रमाण आपको दिखाते हैं, प्रथम अध्याय का 15वां मंत्र। वह इसने के बठा बठा रखे अनुवाद में, कई प्रमाण देंगे परमात्मा का कि साकार है। ये देखिएगा यजुर्वेद भाषा भाषे, और ये प्रथम अध्याय का, ये प्रथम अध्याय है और इसका 15वां मंत्र है। इसका भी स्टार्ट है अग्ने तनुरसी। अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, असी माने वाचो विसर्जनम देव वित्ते तवा गृह में वृद्ध ग्रह असी। अब इसका अनुवाद क्या किया इसने? पहले तो ये देखिएगा कि अग्ने तनुरसी वाचो विसर्जनम तवा इन शब्दों का अर्थ ही नहीं किया इसमें। अग्ने तनुरसी कहीं पर भी अनुवाद नहीं है। ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ये संस्कृत है, इसमें कहीं अग्ने शब्द नहीं है और तनुरसी नहीं है, कि इसमें कहीं भी अग्ने शब्द नहीं है, अग्ने तनुरसी कहीं पर भी नहीं, अर्थ नहीं करा, क्योंकि पोल खुलती दिखे थी, फिर आगे वो दो बार लिखा पाया इसने, करना पड़ा उलट सुलट सा। अब यहां क्या अनुवाद कर रहा है इसमें? प्रथम अध्याय के 15वें मंत्र में, मैं सब सजनों के हित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और काठ के मुसल आदि पदार्थ विद्वान व जीव गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वानों व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूं। ये कोई अर्थ बना इसका? बड़े बड़े पत्थर और काठ के मुसल ग्रहण करता हूं। भगवान शर्म मारेगा पत्थर का और काठ के मुसल का, इसका अर्थ कोई अन्य बनता है जो महर्षि दानंद नहीं समझ सके, वो दास ने किया है। फिर पढ़ लो इसका क्या अर्थ बना, कोई बात हुई बड़े बड़े पत्थर और काठ के मुसल जो मैं ग्रहण करता हूं भगवान कहे है। अब हम फिर आते हैं अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 पर। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये 5वां अध्याय का हमने प्रथम मंत्र देखा, अग्ने तनुरसी विष्णवे त्वा सोमस्य तनुरसी। हम भी इसका अनुवाद आसानी से कर सकते हैं कि परमात्मा आपका शरीर है और सबका धारण पोषण करने के लिए भी आपका अन्य शरीर है, क्योंकि वो अतिथि रूप में, अतिथमसी यानी वो अतिथि रूप में यहाँ आता है कुछ समय के लिए, उसके लिए उनका अन्य शरीर। और आगे देखना इस 5वें अध्याय का ये 6ठा मंत्र आपको दिखाते हैं इन्हीं के शब्दों में। अय है कहते हैं, चोर चुरावे तुम्बड़ी वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे व उपराव न सच्चाई छ नीना। यहां देखिएगा 5वां अध्याय यजुर्वेद, महर्षि दानंद जी का अनुवाद, यह देखना 6ठे में 5वें अध्याय का 6ठा मंत्र। जिस लिए अग्ने, खुद लिख रहा है अग्ने वर्तपते यानी जगदीश्वर, आप हुआ बिजली, बिजली गे लड़ाई दी इसमें, आपका बिजली परमेश्वर या बिजली दोनों लिख लिए बिजली भी, सत्य धर्म आदि नियमों के पालन करने वाले हैं, इसलिए उस आप वा बिजली के बिजली में मैं पूर्वोक्त वर्तों के पालन करने वाले क्रिया वाला होता हूं, जो यह तव माने आपका, आप और उसकी, उसकी नहीं आप, तव माने आपका, तनु माने शरीर है, इसने रांद काट दी विस्तृत व्याप्ति है, आप तव माने आपका, यह आपका तनु माने शरीर है, हैं वह मुझ में जो यह मेरा शरीर है, भगवान का भी शरीर है और मुझ में मेरा शरीर है, सो आप वा उसमें जो ब्रह्मचर्य के व्रत, अब सिद्ध हो गया कि भगवान का भी शरीर है और जो बोलता है उसका भी शरीर है। ये है यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का और मंत्र नंबर 8 है। इसमें ये मंत्र नंबर 8 है, इसमें 3 बार तनूर असी लिखा है 8 का। हे मनुष्य लोगो, तुमको यह जो इस अग्नि बिजली रूप लिख दिया, अग्नि माने परमेश्वर लिखना है, परमेश्वर का, परमेश्वर का अग्नि नहीं, परमेश्वर का स्वर्ण आदि सोने आदि में सोने अत्यंत बड़ा अभ्यंतर रहने वाला तनु माने शरीर है। आए, आए। हे मनुष्य लोगो, तुमको जो इस परमेश्वर का, अग्नि का नहीं, परमेश्वर का जो अत्यंत बड़ा शरीर है, शरीर या है लिखना चाहिए, शरीर है और भयंकर वचन को नष्ट करता है, उत्तम तासे सेवन हुए अन्न को, ये बकवास कर रखी इसने सारी, इस अग्नि माने परमेश्वर का अत्यंत विस्तीर्ण अभ्यंतर में स्थित होने, लोकों में सोने वाला है, यानी लोकों में सोना में अन्य लोकों में भी जब वो जाता है उसका शरीर है। और तीसरी बार फिर लिखा हुआ इसका, इसने अनुवाद नहीं किया, शर्मा गया यू अकड़े सी छुपाऊं। देखो इस मूल संस्कृत में 3 बगे तनूर, तनु ये तनु है, वरिष्ठा तनु वरिष्ठा एक, और मूल संस्कृत में यही पर है ये दूसरा तनु वरिष्ठा, और तीसरा फिर ये तनु वरिष्ठा आए है। इसका अलग अलग अलग इसने केवल 2 बार लिखा, तनु माने शरीर, तनु माने शरीर, और तीसरी बार इसने शर्म आ गई, अनुवाद छोड़ दिया। 150 साल हो गए इसके अनुवाद को ऐसे एज इट इज चलते हुए को। यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 के मंत्र 39 में उसमें लिखा है कि नरवत, नरवत मनुष्य के तुल्य परमात्मा, यही अनुवाद कर रहा है लेकिन गोलमोल कर रहा है, यही महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया है। 7वें अध्याय का 39वां श्लोक आपको दिखाते हैं, ये है 7वां अध्याय यानी 7वां अध्याय और यजुर्वेद और इसका 39वां मंत्र 39, इसमें लिखा कि महान इंद्र नरवत आ, इस दय को तय बनाते हैं, ये इसका संधि छेद करते हैं, जब इसने भी ऐसा ही किया है। नरवत महान माने सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य, नरवत माने मनुष्य के तुल, मनुष्य के तुल परमात्मा है भगवान जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास के ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसे ऐसे। अब यहां लिखना था ए महान इंद्र, महान इंद्र नरवत, हे बड़े महान माने बड़े, इंद्र माने परमेश्वर, नरवत मनुष्य के समान, मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य आप अपना हो और अपना सब कार्य करते हो अच्छी प्रकार, सब मनुष्यों के सुख को परिपूर्ण करने के व्यवहार और परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले, दो प्रकार के ज्ञान से संयुक्त कर, इसने तड़ंगा कर रखा है। बाकी हमने ये देखना कि हे परमात्मा जो है वह परमेश्वर, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास से ग्रहण करने योग्य है, इससे अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य के लिए हम लोग आपकी उपासना करते हैं, यह उपासना हमारे लिए कल्याण का कारण है, इससे तुमको परम ऐश्वर्य पाने के लिए हम सेवन करते हैं। जो महान इंद्र, महान सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य, मनुष्य के समान के तुल्य अच्छे प्रकार, यानी इसका अर्थ ये कि वो परमात्मा, आप आपकी पूजा करते हैं और आप मनुष्य के तुल्य हैं, आप परम पूज्य हैं, ये महान इंद्र। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर 17 में मनुष्यवत अग्नि, मनुष्य के तुल्य परमात्मा, ऋग्वेद ये भी दानंद सरस्वती का ही अनुवाद है, प्रथम मंडल, और ये कहां से प्रकाशित है, सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानवम रामलाल मैदान नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर ये 17 है, इसमें स्पष्ट है मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत अग्नि, अंगीरसवत अंगीर है, इसने क्या लिखा है, मनुष्यवत मनुष्यों के जाने आने के समान, मनुष्यवत इसका अर्थ लिखा है, मनुष्यवत अग्नि, अग्नि माने परमेश्वर, हम स्पष्ट कर चुके हैं, मनुष्यवत माने मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल परमेश्वर, आप सर्व अंग सहित हो और प्रत्येक युग में आते हो, पूर्व भी आते रहे हो, उस पूर्व की तरह एक बार आप फिर आइए, क्योंकि आप अपने ये देखिए जैसे उत्तम पूर्वत माने पहले की तरह फिर से आइए। यह लिखना है हे पवित्र प्राणों के समान धारण करने वाले परमेश्वर, लिखना था अध्यक्ष लिख दिया, हे पवित्र अंगीर माने शरीर, शरीर धारण करने वाले विद्याओं से सर्वत्र व्यापक ये अग्नि माने परमेश्वर, अब पूर्ववत जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले शरीर व्याप्त प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम बकवास के गढ़ रखी है इसने, अंगीरसवत माने सह शरीर, शरीर की तरह आप जैसे आम व्यक्ति होता उस तरह शरीर धारण करते हो, और आप विद्वानों के अति चतुर मनुष्य को अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए, उस मनुष्य को विद्या आदि क्रम और प्राप्ति के लिए मनुष्यवत माने लिख दिया, मनुष्यों के आने जाने के समान, मनुष्य के समान लिखना था, आप अपने जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या के देने वाले होते हैं, इसका वास्तविक अर्थ तो ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 का स्पष्ट अर्थ ये बनता है, हे परमेश्वर आप मनुष्य के तुल्य हैं और आप पहले भी आते रहे हैं, उस पहले की तरह फिर उसी तरह उस सुंदर शरीर धारण किए हुए आप आइए, आप जो पहले यथार्थ ज्ञान देकर चले जाते हो एक बार पुनः यहाँ आइए और हमें फिर से उस ज्ञान से परिचित कराइए, ये परमात्मा का विधान है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 1, 2, 3। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा मैर सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, और ये छपा कहां से, यहां से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आता है वह कांतिमान परमात्मा। इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, यहां लिखना था वो कबीर है, वो कबीर देव है, ये कबीर शब्द है, हम इसको कबीर कहते हैं, कबीर वह को वह बोलते हैं, इसका अर्थ इन्होंने कवि कर दिया और कवि बनाकर इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहां लिखना था कबीर देव, इन्हीं के शब्दों में पुण्यात्माओं परमात्मा ने आपका जो जन्म अब दिया है मनुष्य का, स्त्री या पुरुष का, धन्य आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि अब हम परमात्मा को आसानी से पहचान सकते हैं, हम शिक्षित हैं और इन अज्ञानियों ने जो अनर्थ कर रखे उनको हम आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी जानबूझ के। और आज शिक्षा का यदि कोई लाभ है तो भगवान पाणे में सहयोग है, अन्यथा इस शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं थी, इसने बेईमान बना दिए, हम एक दूसरे के शत्रु बना दिए, 24 घंटे मन में दोष रहता है और उसको अब सेट करने में बहुत समय लग रहा है हमारे को, लेकिन अब हो जाएगी, सारी सेटिंग भी हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा से हमें घना लाभ मिलने लग जाएगा तो हम सब बुराइयां त्याग देंगे। तो इस शिक्षा का अगर लाभ है तो परमात्मा पाने में अति सहयोग है। इसके लिए आपको दिखाते हैं कि जहां जैसे कवि लिखा, कबीर लिखा तो वह लिखना चाहिए था अनुवादकर्ता ने कबीर देव, जैसे इस यजुर्वेद है, ये देखिएगा ये महर्षि दान सरस्वती का अनुवाद है, ये एक यजुर्वेद पुस्तक है, इसके ऊपर रह लगा है, यहां अगर दो अपसर्ग लगा दी जाए तो भी ये यजु, अगर ये अकेला शब्द भी कहीं पर है, ये वेद ना लिखा हो तो भी इसकी महिमा कहीं हो रही हो, तो हमने यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। ये देखिएगा महर्षि दान सरस्वती ने भी ऐसा ही किया है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये दान सरस्वती का ही अनुवाद है और इसके 36वें अध्याय का ये यजुर्वेद भाषा भाष्य है और ये है 63वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु, ये यजु लिखा है यजु, और ये यजुर्वेद की महिमा है। तो यहां इस दानंद ने अनुवाद करते समय यहां ठीक अनुवाद किया है, यहां लिखा है इस यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद को, ओह बहुत ठीक किया, यजु शब्द लिख दिया, इसका यजुर्वेद लिखना पड़ा इसने, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा चल रही है और यदि यहां यजु का अर्थ कुछ अन्य कर दिया जाए तो यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे, किसकी महिमा है ये। ठीक इसी प्रकार अब हम आते हैं ऋग्वेद में, इसी प्रकार अब हम ऋग्वेद में जहां परमात्मा कबीर, इन्होंने कबीर लिख दिया, कबीर को कवि कर दिया, उसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, गलत कर दिया, यहां लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर साहब, हम कबीर साहब कहें, देव माने साहब कहो, भगवान कहो, अल्लाह को। अब हम ऋग्वेद पर आते हैं क्योंकि बीच में ये कंसेप्ट क्लियर करना था, इसलिए यजुर्वेद लिया था बीच में, ये वही है, यहां से ये छपा है। प्रकाशक है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का, मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं, देख कितना स्पष्ट है इसमें, ये कबीर लिखा, कबीर अत्यय, तो इसको इन्होंने ऐसा लिख दिया, दो अपसर्ग लगा दिए तो फिर भी यहां लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव लिखना था। जैसे ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20, इसका मंत्र नंबर एक में यहाँ लिखा है वो कबीर देव, कबीर देव, वो कबीर देव, ये कबीर साहब लिखना चाहिए था, कबीर परमेश्वर, तो यहाँ केवल कबीर लिखा है तो अभी ये कबीर देव ही लिखना पड़ेगा। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले यजमानों माने साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में, यानी परमात्मा कबीर देव वो लिखना था, वह कबीर देव कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ यानी बहुत शीघ्र गति से चलता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ अच्छी आत्मा को मिलता है, गति करके वहां से चलकर आता है। ये देखिएगा अब 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 27 में क्या कहा है, हम यहां लिखेंगे जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा, फिर यहां लिखेंगे जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है, द्यूलोक के उस तेजो में लोक के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो प्रकाश रूप है, यानी एक देशीय हुआ वो परमात्मा ऊपर तीसरे द्यूलोक के यानी उस सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर तीसरे स्थान पर विराजमान है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और यहाँ आते हैं मंत्र नंबर 1, देखना कितना स्पष्ट लिखा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला प्रकाश रूप अरुसे माने वो साकार परमात्मा, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला हरि माने पापों का हरण करने वाला, अर्युदानंद मठ कह रहा था मेरा पाप नाश नहीं करता, या फिर लिख रहे हैं पापों का हरण करने वाला पापों का नाश करने वाला, वह राजेव राजा के समान, ये देखना हम 269 यानी 269 पे, और यहाँ पर लिखा कि वो राजेव राजा के समान, इसका शेष है 270 पे, ये है शेष 270 पे। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र हम 1 पढ़ रहे हैं, 270 पे राजा के समान दर्शनीय है, दर्शनीय देखने योग्य है, राजा के समान साकार है, मनुष्य दृश्य है, वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुष को श्रेष्ठ, वर्णीय माने श्रेष्ठ भगत पुरुष को व्यक्ति को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, और वो उसका उद्देश्य क्या होता है ये देखिएगा दूसरे मंत्र में, वो किस उद्देश्य से आता है वो परमात्मा, ये कबीर शब्द है यहाँ पर, कबीर कुल पाठ में कबीर कबीर वेदस्य, ये परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, सच्चा ज्ञान देने के लिए आते हो, और आप कांति अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो, यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से आप चलते हो, आप ये फिर सर्वज्ञ लिख दिया, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आगे आगे आप पापों को दूर करके हे सोम हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें, अपन आत्माओं, इसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है, राजा तो मनुष्य जैसा ही होता होगा और कौन सा वो पत्थर जैसा होता है, और वो स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है और वहां से गति करके आता है, अच्छी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। वो किस किस को मिला? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। वो परमात्मा किन अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहेब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहेब जी को मिले, आदरणीय नानक साहेब जी को मिले।
2: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
3: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन, धार्मिक कथा, ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने, जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
2: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
3: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।

सुनाते, दर बताते, नैया खेते, मिन्नत करते, रास्ता तकते, कितनी सदियां बीत गई हैं, अब जाकर ये भेद खुला है। जिसको तुमने अर्ज गुजारी, जो था हाथ पकड़ने वाला, जिस जा लागी नाव तुम्हारी, जिससे दुख का दारू मांगा, तोरे मंदिर में जो नहीं आया, वो तो तुम ही थे, वो तो तुम ही थे।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: कैलगरी इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।
2: बुरा ढूंढन चलिया, बुरा ढूंढन

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन पैटियो डेक प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज।

एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह की रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue South East Calgary near

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डीजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है, यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue Northeast, Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

कैलगरीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी अकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4 start या विजिट करो www.punjabiradio.com।

0: गुर प्रसाद नानक मत पाए।
1: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दवायो, सर्ब सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
0: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दुदाई दाया खेले सगल जगत, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਹਾ ਨਾ।

दंडौत वंदन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ।

सदा तुद ध्यान आनंद गुण निधान तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महादान एक ओंकार सतगुर प्रसाद असा महला चौथा शांत कर चौथा हरे अम

0: नानक सत संगा।
1: श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फेरे जंत विस्माद पौण विस्माद पाण विस्माद अग्नि खेडे बिडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद स्वाद लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद कोक विस्माद खोक विस्माद शिव विस्माद सला विस्माद उजड़ विस्माद राहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख के हाजरा हजूर देख बिना रहा विस्माद नानक पूजन पूरे
0: पाला। पहला कुदरत दसाए कुदरत सुनिए कुदरत भाओ सुख सार कुदरत पातानी आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनण कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिंसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत वधियां कुदरत मान अपमान कुदरत पौण पाणी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता बाकी नाई पाक नानक हुक्मे अंदर वेखै वरत ताको ताक पौड़ी आपी ने भोग भोगै होए पसमण पौर सदाया वड्डा होआ दुनिया गल संगल कत चलाया कि करनी की दवाचिया पहले खा कर समझाया था न होई पौली हुण सुनिए मन
1: गवाया दुनीदार गल संगल कत चलाया आग्या करनी की तवाचिया बह लेखा कर समझाया आओ ना हो वही पौधे हुण सुने क्या रवाया मन अंधे जन्म गवाया मन अंधे।

0: मेरा मन धन बजा, हर भाग बटे हर पाया। नानक रसगुद्दा
1: श्लोक महला पहला, कड़ियां सब गोपियां पैर कन गोपा, गहने पौन पानी बसंत चल सूरज बता, सगली धरती माल तनु बरतू सरजन जा, नानक मूसे ज्ञान विहूनी खाए गया जमकाल महला पहला। वन चेले नचन गुर पैर हलान फेरन सिर, उडुड़ावा चाटे पाए वेखे लोक से कर जाए, रोटियां कारण पूरे दाला पछाड़े धरती ना, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम, निरपंद निरंकार सच नाम जागा किया सगल जहां, सेवक सेवे करम चढ़ाओ पिनी रंजना मंचाओ, सिखी सिख्या गुरु विचार नदरी करम गाए पार, कोलू चरखा चक्की चक थल भरोले बोध अनंत, लाटू मदानियां नगाहा पंखी पौंदियां लैन नसाहा,
0: जड़ पाए जंत नानक पौंदियां गणतनांत, बंदर बंद पुआए सोए पाए करत नच सब कोई, नच नच हसे चले से रोए उठ न जाई सिदरा होए, नचन कुदन मन का जाओ नानक जिन मन पाओ, ते ना मन पाओ कौड़ी ना उतरा निरंकार है, नाय लय नरक ना जाई है जीव बिन सब दिसदा, देखा जै आख गवाई है जे लुड़े चंगा अपना, कर पुन्नो नीच सदाई है जे जरवण पर जरवेश, करे दी आई है तो रहे ना, परिये पाईये परिये पाईये परिये पर
2: कौड़े ना उतरा निरंकार है, नाय लिया नरक ना जाइए, जियो पिंड सब तिसदा देखा जे आख गवाई है, जे लोड़ है चंगा अपना, कर पुन्नो नीच सदाई है जे जरवण पर जरवेश,

0: लेखन लीला कलिका से
1: श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड़ी लदिए पढ़ पढ़ भरिए साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए पढ़ पढ़ गड़िए खात पढ़िए है जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आजा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल और हो में जखड़ा जा
0: पहला लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ भविया ते तो लवया।

0: मत समझाए।
1: जनक दास हर कांडिया हर पैजर खाए पैजर।
0: श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग प्याजा सुख कामना होई। तू करता करना में नहीं जहां करी ना होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहो। जात में जो जोत में जाता बिलकुला भरपूर रहा। तू सच्चा सहज सुस वालो जिन की तीसो पार पिया। कहो नानक कर दे गिया बाता जो कुछ करना सो कर रहा।
1: तुझा जोग सबदंग ज्ञान सबदंग वेद सबदंग ब्राह्मण है खपी सबदंग सूर सबदंग सूदर सबदंग प्राकृत है सर्व सबदंग एक सबदंग जे को जाने पे। ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा। एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा ताई आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पे। ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला।
0: तुम पे पता जर रहे जर बिन कुंभ ना होए। ज्ञान का बदम रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। पौड़ी पड़े हो गुणी का
1: साध न मारिए जे हकल कहलना। देवे हो ना हो पुजारिए सिकल न खेडिए। जित दर गए गया हारिए पड़े।

0: संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण पगा ए आई है प्रतीत प्रतीत है आई जिन जान के तिनको पदवी उच्च पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई, अब लोक्या ब्रह्म परम सब छुटकिया दिव्य दृष्ट कारण करन सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारण करन निर्मल नाम सुधा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिन आगर गहर गंभीर अथा अतबड सो पर सदा सब विद्युत नागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कल युग दुर्त दूर कर बे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर कल युग दुर्त दूर कर बे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर।
1: परताप सदा गुर का कट कट परगास प्या जस जन कै इक पड़े सुने गावे प्रभात करे इशनान इशनान करे प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन हुए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रेहा पूर्वो विद वर्णं सत गुर गुर से अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरनं।

0: जाकम ध्यान तारे फेरत सकल जोग कबहु को पावे आत्म पर गास को वेद बाणी सहित बेरंच जस गावे जाको सेव मुन गह न तो जात का बलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटाजूट पेख किए फेरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बधाई दई गोर रामदास को मनसाकार सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जू तन बाचाकार सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जू खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल पत जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तय हर परम पद पायो
1: जह सतगुर सिमरंत नायन के तिमर मिटाखिन जह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नवनिध पावे सोई रामदास गुर बल पन मिल संगत तन तन करो जह सतगुर लग प्रभ पाईया सो सतगुर सिमरो नरहो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड़ो पास ताते गौर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीरत जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिवे अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास का गुर।

छोड़ी सृष्ट सकल तारन को, अब गुर राम दास को मिली बड़ाई। मोह मल बेवस कियो, काम गए केस पछाड़ियो, क्रोध खंड पर चंड लोभ अपमान स्यों चाड़ियो, जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सुमन, भव सागर बंदियो सिख तारे सो प्रसन्न, सिर आत

0: सच साल पाण तू अटल राज अपग दल।
1: गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव शिव सिद्ध साधिक सुरे सुर गन तरे ते तिस गुर बचन सुन कन रे हुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर तरयो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे तरै नारदाद सनकाद हर गुरमुख तरै इक नाम लग तजो रस अन रे दास बेंत कह नाम गुरमुख लह गुरु गुर गुरु जप मन रे तू सतगुर चौं जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरे तुर।

जिन सेविया तिन फल पाया, तिस जन की सब भुख गवाई है। नानक तिन विटहौ वारिया, जिन अन दिन हिरदै हर नाम त्याई है। जिन सेविया तिन फल पाया, तिस जन की सब भुख

सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूर। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूवे। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूर। बिनवंत

पुरो हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहिब आते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार आते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमानियां दे मान नेतानियां दे तान ने उटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सचे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाह प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत आते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिद्धक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हाजूर कड़ा प्रसादी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे वंद होवना।

0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी तुर की बाणी आई।

0: সব নেমে অপর কোনে না কোয়ে, কর্তর জুতলিয়ে নেমে সুগরা হয়ে, অপরাধী ধুনা নেমে জো হন্তা বৃগা হে, শীষ নয় কাথিয়া জারি দে কসুতে যাহে।
1: और पुस्तक संध्या बादन सिल पूजिस बगल समादंग मुख झूठ विभुखन सारंग त्रैपाल ते हाल विचारंग गल माला तिलक लाटंग दो धोती वस्त्र पाटंग जे जान सब हम करमंग सब वकट निश्चय करमंग कहो नानक नह चो त्यावे बिन सतगुर बाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन भाव दे भीड़े अगे जावना नंगा दो जग चालिया ता दसै खरा डरावना कर औगण पछतावना कर औगण पछतावना
2: ਪਛੋਤਾਵਨਾ
3: ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ

कोई गवेरा की नाती बेटी पपात कर नहीं हर हर पी जय राम राजे जिन अंदर।

0: महला पहला गौ ब्राह्मण को प्रणाम बाबा गुरुदर न जाई धोती टिका दे जो माली तान मले सखाई अंतर पूजा पड़े कुते संजम दुर्गा पाई छोटी ले पखंडा नाम ले है जाय तरंदा महला पहला
1: मानस गाने करे नवाज सुरी बगान तिन गल ताग तिन घर ब्राह्मण पूरे नाग ओना पिहावे ओई साथ कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर
0: मथे टिका तेर धोती का खाई हाथ छुरी जग कसाई निर्वस्त्र पैर होवे प्रधान मले साले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंक फिर किसे न जाना देखे चौंका कटी का रूप रहा है बैठे कूड़े मत पिटे मत पिटे।

अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगण सियाने राम राजे जे बारो कुल चुक भो।

0: जैसे ती कसम समाए।
1: नानक ना जपनी हर ताके परवा, आप कराए साक्ति फिर आप कराए मां। इतना गली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिस्या, आप कराए करे आप हो कैसो करी पुकार। नानक करना जिन किया फिर तुसी करनी सा।
2: भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो। हरणा खश मार पजाया गुरमुखानो प्रतीत है हर जियो। मन मुख भरम भुलाया हर जी ए तेरी वडियाई। भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी शरणाई। हर जुग जुग भगत को पाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर नाखश दोस्त हर मारिया, प्रहलाद तराया अंकारिया नेंद का।

0: माया गुजर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दा सुन दा तुद आगे बिनु बता
1: सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिह्न अर बरन जात आर पात नहन जिह रूप रंग अर रीख पीख को कह न सकत केह अचल मूरत अनपाहो प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहि साहान गणिज त्रिपावन महीप सुर नर असुर नीत नीत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथय कवन करम नाम बरनत सुमत सोई पुरख सिवर साचा जाका एक नाम अशल संसारी जिन भगत भव जल तारी सिमरहु सोई नाम प्रधान तित नाम रसिक नानक लहना थपियो जीन श्रब सिद्धि कावे जान कालस बुद्धि कीरत जान अमरदास बिस्त्रिया कीरत रव किरण प्रगट संसार साख तरोवर मवल सरा उत्तर दखण पुबयार पश्चम जय जयकार जपंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायाओ उलट गंग पश्चम तरिया सोई नाम अशल भगत है भाव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया छुटत परवाह अमय अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवह संत करह जन मज्जन पोब जिनह सेवा करिया तिन पौ निवार अन पै पद दीना शबद मात्र ते उधर तरे काव कल ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सार अपार परे ना रोगं ना सोगं न जातं न मातं न कर्मं न परमं न जन्मं न जातं अद्वैखं अपेखं
अजोन्नी सरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे सुकाहौ टल गोर सेविया अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डिठे सच्चे पात सा मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दै साहु जिस पास बैठिया सोहिया साबना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दै साहु जिस पास बैठिया सोहिया साबना दा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सलोक महला तीजा बिन सतगुर सेवे जीय के बंदना विच हाउ मैं कर्म कमाहे बिन सतगुर सेवे ठौर न पावही मर जम्मह आवह जाहे बिन सतगुर सेवे जीय के बंदना विच हाउ मैं कर्म कमाहे बिन सतगुर सेवे ठौर न पावही मर जम्मह आवह जाहे बिन सतगुर सेवे फिक्का बोलना नाम न वसै मन माहे नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बद्दे मारियन मोह काल उठ जाहे

जित मैं प्यारा विसरै नानक साई भली परीत जित साहिब सेती पत रहै पौड़ी हर एक दाता सेविया हर एक त्याईया हर एक दाता मंगिया मन चिंदिया पाईया

जिन सेविया तिन फल पाया, तिस जन की सब भुख गवाई है। नानक तिन विटहवारिया, जिन अन दिन हिरदै हर नाम त्याई है। जिन सेविया तिन फल पाया, तिस जन की सब भुख गवाई है। नानक तिन विटहवारिया, जिन अन

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिवें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
3: वाहिगुरु साहिब जी ना हौ जपी सकी नहीं पढ़िया मूर्ख मुगता जन्म पया प्रणवत नानक तिनके शरणा जिन तू नहीं विसरिया जा

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

दाते मेरा गुण अवगण ना बिचारू कोई, माटी का क्या तोहपै स्वामी, मानुष की गत एही। जीता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगण हमारे, दया करो किछ मेर उपावो, डूब दे पत्थर तारे। सतना

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
2: प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसीं रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 पुजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हॉल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-453-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, Northeast Calgary।

0: कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण ले तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवे नवाना, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लेके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

दर्शन संत देहो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुम गाए। तुम समरथ पुरख वडे प्रभ स्वामी, मोको कीजै दान हर निमगा। जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटहो सद घुम गाए। तुम समरथ पुरख वडे प्रभ स्वामी, मोको कीजै दान हर निमगा।

0: सूही महला चौथा हर हर नाम पढ़ियो परखोत्तम सब बिन से डालद दल भा।
1: धन गुरु रामदास पातशाह जी दी मुबारक रसना तो उच्चारण होया ते सूही राग दा शब्द है जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 731 अंग ते सुभाईमान है। ये मेरे पातशाह वो ने जिन्ना पास भट्ट जी आए अज नाल ही नाल भट्टां दा मिलन दिवस भी है, जिस संबंध विच मंजी साहब श्री अखंड पाठ साहब जी दे संपूर्णता उपरंत इत्थे दीवान भी सजने ने। पाठ की कहंदे ने, हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिखखाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो, केड़ा उत्तम पंथ सुनिया? एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरनाई। असी औगुणा नाल भरे पए हां, साडे कोल एक भी गुण नहीं है। जिंदगी जहर नाल जुड़ी रही ते अमृत छड़ी बैठी रहे, पर ऐसी अंदर सोच आई भी मैं किसे उत्तम पंथ वाल चलां ते ओ पता चलिया उत्तम पंथ है गुरु दी संगत। ओ धन गुरु रामदास पातशाह सिंघासन ते सुभाईमान ने उन्हां दी शरद विच चलिए। ते हुण भट्ट जी कहंदे ने, मेरी अरदास है पातशाह आए हैं आप जी कोल सानू अपनी शरण विच रख लेना। अरदास कबूल पै गई, शरण विच रख लिया। उन्हां भट्टां दे मुखों निकली ओ बाणी, रहिंदी दुनिया तक धन गुरु रामदास जी दी शरण विच रहण वाली श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच दर्ज हो गई। तो धन गुरु रामदास पातशाह जी फरमान करदे ने, सूही महला चौथा हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम सब बिन से दालद दलगा। ए मेरे पातशाह जी रहमत करो, कदी मैं नाम सिमरन विच चला जावां। जरा एक गल ध्यान च रखियो, जिन्ना ने हरी नाम भजिया अंदर सुरत विच जपिया उन्हां दे सारे दुख चले गए। उन्हां दे दालद ते दालद दे अर्थ ने दरिद्रता गरीबी कंगालता ओ चली गई। बिपर सुदामे दालद पांज रे मन तू पी भज गोबिंद हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम सब बिन से दालद दलगा। ए हकीकत है, अगर गुरु उपदेश अंदर वस जाए सिमरन विच जुड़ जाइए, नाम सिमरन पुण इकट्ठे करता। कल मैं एहो पुण गुण गोविंद गाहे, जदों गोविंद दे गुणा दा गाह पाया बार बार जपया, ध्यान च रखियो वो नाम सिमरन साडे शुभ कर्म बन गए। वो शुभ कर्म बन गए नाल वाहिगुरु जी दी असीस ते कृपा दृष्टि हो गई। दो गल्लां ने, एक सिमरन शुभ कर्म बन गए नाल मालक दी रहमत उसका कर्म हो गया, ते फिर जिंदगी दे सारे दालद सारा दरिद्र सारी गरीबी सारी कंगालता चली गई। कदी कवि हीर जी बहुत गरीब सन, कविता कमाल दी उचारते सन, कवि बड़े महान सन, पर पैसे पक्षों बहुत गरीबी सी। सुनिया दसम पातशाह कवियां दी बड़ी इज्जत करदे ने, दसम पातशाह जी कोल चले जाइए ते बख्शिश ते रहमत नाल झोलियां भर देंदे ने। इस भावना नाल आई आके सतगुरां दे समक्ष एक कविता शुरू कर दी, पास ठाडो झगरत झुगत दरीर मोहे, बात ना करन पाऊं महाबली मीर सौ, दारद कपूत तेरो बनियो है मरन आज, करके सलाम विदा हुजो कभी हीर सौ, नातर गोबिंद सिंह बिकल करेंगे तोहे, टूक टूक ठाडे हैं दानन के तीर सौ। महाराज मेरे कोल खलोता है, मैनू इसने बड़ा चुकाया है, दर दर चुकाया है, मैं इसके अगे रत्ती भर भी अपना जोर नहीं चला सकिया। ते सतगुरु कहिंदे कौन है? महाराज मेरा दरिद्र, मेरी गरीबी, मैनू इन्हें वड्डियां वड्डियां अगे चुकाया है, महाराज इन्हू छोटियां अगे भी मैनू चुकाया है, मेरी अंदर कोई पेश नहीं जांदी। अज मैं दरिद्र नू कहिंदा दरिद्र चला जा, दारद कपूत तेरो मरन बनियो है आज, करके सलाम विदा हुजो कभी हीर सो। कहिंदे तू अज मैनू सलाम करके तुर जा, अगर ना गया ते गुरु गोबिंद सिंह जी दे कोल बाहर तीर भी चलांदे ने, ते जदो दान दा तीर चलांदे ने ना, ते झोलियां पर देंदे ने, ते तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कलगीधर महाराज इस दी कविता भी सुनी, दिल का भाव भी सुनिया, सतगुरां ने रहमत करके इन्ना क खजाना कवि हीर नू दिता, नाम दी दात दे के अपना सिख भी नवाजिया, ते सिखां नू कहन लगे हुण कवि हीर नू इंदे नगर छड के आओ, हाथी ते सवार करो, नाल नगारा बजदा जाए, इस कोल धन संपदा दी ओ पोटली भी कोल बजी होवे, ते जदों नगर विच जावे ना ते पता चले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दर दा मंगता बादशाह बन के घर आ रहा है। गल थोड़ी ध्यान च रख लेना, ये मेरे ओ मालिक दा दर है जिथे जन्म जन्म दा दरिद्र गरीबी कंगालता ते आलस ओ सदा लई दूर हो जांदा। मेरे पातशाह कहिंदे ने उस वाहिगुरु दा नाम भजो जी,
0: पौ जन्म मरण मिटियो गुर सबदी, हर आस तिर सेव सुख समगा।
1: सिमर नाल अकेली गरीबी दरिद्रता ही दूर नहीं हुंदी, जम्मन मरण दा डर भी मुक जांदा है। देखो मनुख दे अंदर बड़ा सहम रहिंदा है, हाए मर जावांगा, दुनिया छड़ जावांगा, कि मरण तो बाद मैनू फिर जन्म लेना पाएगा। सतगुरु कहिंदे ने सिमरन परी अवस्था विच होएगा उनका भाव डर जन्म ते मरण दा वो सारा चला जाएगा, क्योंकि गुर शब्दी ये गुरु दा शब्द है, ये सिमरन गुरु दा शब्द है, सिमरन जीवन जाच गुरु कोलो मिलती है। ते जदों गुरु दे शब्द ते पहरा दिता, मैं बेनती करा, धन गुरु रामदास पातशाह जी कहिंदे ने भलिया तू गुरु दा सिख है ना, तू सिख अखवाना है ना, ते गुर सतगुर का जो सिख अखाए अखवाए सिख, ते भलके उठे ना, अमृत वेला संभाले ना, ते अजे सिख अखवाउण विच कमी रह गई है, अखवाया ही सिख सिख नहीं है, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ते आवे, उद्यम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सर नावे, पहला पानी दा इशनान करे, फिर बाणी दा इशनान करे, नाम दा इशनान करे, इशनान करे अमृत सर नावे, उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किल विख पाप दोख लै जावे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहिंदियां उठदियां हर नाम ते आवे, जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन पावे। केड़ा गुरसिख गुरु दे मन नू पौंदा, जेड़ा गुरु दे शब्द दे आधार दे वाहगुरु दा सिमरन करदा, ते गुर शब्दी अस्थर हरी रब नाल जुड़ जांदा, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਮੁੱਖੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਹਾਏ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਦਾਤਾ ਦੀਏ, ਕਿਸ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਰਾਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਜੀ।
0: ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਤ ਫਿਰ ਕਾ,
1: ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਬੋਧਕ ਹੋਇਓ, ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਆਖੀਏ ਤੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਆਪੂ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੋਲੀਏ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਰਾਮ ਭਜ ਰਾਮ ਭਜ, ਜਨਮ ਸਿਰਾਤ ਹੈ, ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਵਾਸ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਐ ਭਲਿਆ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਤ ਪਿਰਗਾ, ਅਤ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ

भजन ना किया तो राणी तो मुड़ नौकरानी बन जाएंगी। कंब उठी, हाथ जुड़ गए, चरना ते ढह पई ते साहब जी नू कहन लगी, महाराज कृपा करो ऐसा वचन ना आखो। ते सतगुरु कहंदे, सच दस तू राणी बन के गुरु ते दर्शन करना चाहनी सै कि गुरु नू परखना चाहती सै? महाराज भुल हो गई, खिमा कर दियो। ते सतगुरु कहन लगे, देख राणी आ बड़े कीमती वचन आ गए, राणी गुरु ते श्रद्धा करिए ते झोलियां भर जांदियां ने, ते जे गुरु ते शक करिए ते झोली विच जो हुंदा वी खाली हो जांदा है। ये हकीकत है। हाथ जुड़ के खिमा मंगी ते सतगुरु कहन लगे, राजा बन के राणी बन के जे परमेश्वर की भगती सिमरन करिए ते दाते वालों होर बरकतां झोली विच पैंदियां ने, ते जे दाते नू भुल के दात नाल जुड़ जाइए ते फिर एक दिन फैसला होना, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हाथ फलगा, फिर पश्चाताप करदा, चूंकि फिर हाथ विच जदों इस कीते कर्मां दा फल मिल

तुम समर्थ हो, इतनी शक्ति दे मालक हो भी जो चाहो कर सकते हो। धरती ते आकाश चढ़ावे चढ़े आकाश गिरावे, बड़ी समर्थ है तुहाडे कोल। भिखारियां दियां झोलियां भर के उन्हां नूं रजा सकते हो। तुम समर्थ पुरख वड्डे प्रस्वामी, मोको कीजा दान, मैनू दान दियो, ऐसो दान देहो जी संतो, जात जियो बलहार, कृपा करो मैनू नाम दा दान बख्शो। एक निमख मात्र भी मेरी सुरत किते जुड़ जाए, ऐसी कृपा कर दियो। आखो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, जुड़ जाओ। वाहिगुरु बोलदे आ उन्हां बोलां विच समो जाना। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। किनका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। पातशाह कृपा करो, कीजा दान हर निमगा, एक निमख मात्र दा जुड़ना, ये दान मेरी सुरत विच पातशाह जी कृपा करके।

जन नानक नाम मिले सुख पावे। पातशाह जी मैं नाम प्राप्त कर लवा, मैनू इंज लगदा जिवें तिना लोकां दे सारे सुखां तो सरमोर सुख मैनू मिल गया। हम नाम विटों सद घुमगा, मैं नाम तो सदा अपने आप नू कोल कमाई करा, वार वार जावा, बलहार बलहार जावा। मैनू नाम मिल जाए, घर मिल गया, साडो शौकत मिल गई, सुंदर शरीर वस्त्र मिल गए, रिश्तेदार संबंधी मिल गए, हर तरह दियां सुख सहूलतां जिंदगी विच जीन वालियां मिल गईयां, एक नाम नहीं मिलिया। नाम मिल जाए, कृपा करो पातशाह जी। मेरी अरदास है, असीं भी सारे अरदास करनी है, पातशाह कृपा करो। मैं उठदियां बहिंदियां चेते विच रखां, मेरी रसना ते वाहिगुरु वाहिगुरु चले, मेरी सुरत वाहिगुरु जी दे घर रहन लग जाए, सारे औगुण विकार आपे नस जाणगे। मैं एक बेनती करांगा, तमाम दुखां दा विनाशक नाम है, तमाम सुखां दे देन वाला नाम है, तमाम औगुणां नू कटन वाला ओ वाहिगुरु दा नाम है। कृपा करके मैनू नाम एक छिन मात्र भी सुरत विच टिकन वाला मिल जाए। एक कृपा करके मैनू दान बख्शो जी। इथों तक अज दे हुक्म आए मुख वाक दी विचार। आओ लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी विचार नाल जुड़ना।

आप जी दयाल होना, कठोर ते नहीं होना, दया करन वाले हो, तरस खान वाले हो, ते मैं आया हां शरण विच, ते सानू कृपा करके शरण आया नू पातशाह अपनी भगती दियो, अपनी भगत दे दयाला वड पागी नानक हर पावो। वड्डिया भागां वालिया नू रब मिलदा, रब दी भगती मिलदी है। ते एक गल सच करके जान लियो, जिन्हां कोल भगती आ गई है समझ लैना भगवान दे सारे खजाने आ गए ने। भगवती भगवंत भगत का रंग, जिस भगत नू भगती दा भगवान दी भगती दा रंग चढ़ गया है, यह समझ लेना जिंदगी विच उन्हें बहुत कीमती खजाना प्राप्त कर लिया। फिर कोई दुनिया की तत्ती वाह नहीं लग सकती। अग्गी पाला के करे, अग बाली होवे तो उथे पाले की कीमत सर्दी लग जाएगी। सूरज के ही रात, जे सूरज चढ़े तो भला रात रह सकती है। अग्गी पाला के करे, सूरज के ही रात, चंद अनेरा के करे, पौन पानी क्या जात। आ पानी है, ये हवा है, ये तो नहीं है ना भी जे किसी नीवी जात वाले ना लग जाएगी। जे पानी वगदी नदी चो को नीवी जात वाला पानी भर लेगा तो की पानी दी, मैं बेनती करा क्वालिटी बद जाएगी, यो घटिया हो जाएगा। पौन पानी क्या जात, धरती चीजी के करे, जिस विच सब कुछ होए, जमीन विच मैं बेनती करा इथे निम भी उगदी है, इथे गन्ने भी पे उगदे ने, ए धरती विच जो कुछ भी पैदा हो जाए मैं बेनती करा धरती किसे नू मनाही नहीं करदी। ते ए मेरे मालक, जे तेरी शरण विच आ जाइए ते दुनिया दे दुख भरम पौ किथे रह सकदे ने। धरती चीजी के करे, जिस विच सब कुछ होए, नानक तां पत जानी है जां पत रखे सोए। जिस दी तुसी पत रख लेंदे हो, जिस ते तुसी कृपा कर देंदे हो, उस दियां झोलियां भर देंदे हो। मालिक कृपा करियो, रहमत करियो, मैं शरण विच आया, मैं शरणागत होके एक दात मंगदा कि पातशाह नाम बख्शिश कर दियो। एक गल चेते रखियो, जिस कोल नाम आ गया दुनिया दियां सारियां बरकतां उस कोल आ गईयां। छाया प्रभ छत्रपत कीनी, सगली तपत बिनासी राम, दुख पाप का डेरा ढाठा, कारज आया रासी राम। वाहिगुरु दी छत्र छाया हेठ जीवियो, सिमरन करके अरदास करके धन गुरु रामदास जी दे दर नाल जुड़ के शब्द गुरु ते भरोसा ते विश्वास रख के गुरसिखी जीवन दी परपक्ता रख के ते पतत पुने तो बच के जीवन बतीत करियो। दाते दे दर कर दियां सारियां बरकतां झोली विच पैन गईयां, लोक परलोक सेला ते चढ़दी कला बन आवेगी जी। इन्हां अखरां नाल कोटान कोट धनवाद, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, धन धन गुरु रामदास पातशाह जी का, अते गुरु घर के समूह प्रबंध का तह दिलों धनवाद। सिंह साहब मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरिमंदर साहब, सिंह साहब ज्ञानी अमरजीत सिंह साहब जी का तह दिलों धनवाद। आईया संगतों बड़े अदब अदाब नाल हाथ जोड़ के सारिया संगतों का तह दिलों बहुत बहुत धन्यवाद। दासरे दियां गुरमत विचारां करदियां होईयां भुल्लां दी खिमा करना जी। आओ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन शब्द दे अखीरले बोल फिर श्रवण करके उपरंत फतेह नाल सांझ पावां।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144-3670 63rd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी उर्दू मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
3: पवित्र श्रीमद भागवत गीता पवित्र चारों वेद पवित्र कुरान शरीफ पवित्र बाइबल पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
4: बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहे गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधु मां संतों सर्वस दी नहीं सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम आगे पीछे मज हुए तिन कुंजा कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतल उज्ज्वल हीरंबर हरदम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मद्दतम। ग्रीब जो सुमर सिद होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊ आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम दिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं धरूं चरण पर शीस गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो में बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूं गुरु देव का रामपाल दास का नाम गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चुभा जाम। तो करो तो बावड़ू

सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होई। कबीर, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन। तीन लोक के वे धनी, गुरु आग अधीन। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, वो लग गया हर की सेव। कहे कबीर बैकुंठ से, वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए, फिर लग गया हर की सेव। कहे कबीर बैकुंठ में, चले गए सुखदेव। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमर पार। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बक्सो गरीब निवाज।

का नक्शे के बड़े विकार, तुम दाता दुख बंजना मेरी करो सुमर, सूरत करो मम साईया हम हैं भव जल माय, आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बा। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज़ जहाज का अब सूजत और न ठोरे। परमपिता परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी कबीर साहब जी के असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग उपलब्ध हुआ। मानुष जीवन का मूल उद्देश्य सत्संग में आने से ही पता चलता है। जब तक हम सत्संग श्रवण नहीं करते, हम अपने दैनिक कर्म को जो भी जैसा कर रहा होता है उसी को उत्तम मानते हैं, और जो पुण्यात्माएं परमात्मा की तड़फ में पिछले पूर्व जन्म के संस्कारों के प्रभाव से परमात्मा की चाह में इधर उधर भटक रहे हैं, उनको सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। वे जहां भी गए, जिन संतों से मिले, उन संतों को एक परम संत मानकर उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को स्वीकार किया और फिर पूर्ण विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को किया। लेकिन उन संतों के पास सत्संग नहीं था, कोरा कुसंग था। पुण्यात्माओं, जिन भक्तात्माओं को परमेश्वर कबीर जी का यथार्थ ज्ञान गहराई से समझ में आ चुका है, वे भक्त आत्माएं दास के इन वचनों को सहर्ष स्वीकार करते हैं और गदगद होते हैं। जो पुण्यात्माएं प्रथम बार आते हैं, एक दो बार आए हैं, उनको ये बताया जाता है कि उन संतों के पास जहां आप पहले जाते थे उनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं था, उनके पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं थी, जिस कारण से आपका भी और उन गुरुओं का भी मानव जीवन व्यर्थ हो रहा था। तो पुण्यात्मा महसूस करते हैं कि क्या किसी के पास भी सत्संग नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। परमेश्वर ने तो यहां तक कहा कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, केवल वो हंसात्माएं, वो पुण्यात्माएं जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार आकर मिले, केवल वही सत्संग से परिचित हुए और उन्होंने ही परमात्मा परमेश्वर जी का साक्षात्कार किया। फिर वो संख्या में बहुत कम थे, जिस कारण से इन अज्ञानी और अनाड़ी संतों ने उन महापुरुषों की अमरवाणी को जनसाधारण तक नहीं जाने दिया, जिस कारण से आज तक हम अपने अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद करते रहे, व्यर्थ करते रहे, नष्ट करते। मानुष जीवन का मूल उद्देश्य सत्संग से ही पता चलता है, और सत्संग के अंदर यथार्थ ज्ञान दिया जाता है। जहां यथार्थ ज्ञान नहीं दिया जाता, वो भले ही सत्संग के रूप में भक्त श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, लेकिन वहां सत्संग ना होने से, वहां यथार्थ ज्ञान ना होने से वो सत्संग नहीं होता। अब मनुष्य जीवन, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डार। ये मानुष जन्म आप जी का जिस भी कुल परिवार में है, जिस भी मजहब धर्म में है, ये मनुष्य जीवन है। इस मनुष्य जीवन से हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, और यदि हम परमात्मा प्राप्ति
कि यथार्थ साधन से परिचित ना हुए एक दिन ये मनुष्य जीवन हमारा समाप्त होगा, और ये ऐसे होगा कि जैसे पेड़ से पत्ता टूटकर नीचे गिर जाता है तो पुनः उसी स्थान पर उसी तरह स्थापित नहीं होता, फिर वो कहीं पशुओं के पैरों के नीचे कुचला जाता है या गंदे नाले में गिर के वो सड़ता है। ऐसे ही मानुष जन्म आपके हाथ से छूट गया तो पुनः शीघ्र प्राप्त नहीं होगा, फिर ये आप जी की आत्मा ना जाने कितनी गंदी योनियों में भटकेगी, कहीं कुत्ता गधा सुअर बनेगी, वहां नाना प्रकार की यातनाएं आप जी को भोगनी पड़ेगी। और यदि सतगुरु मिल जावे, सत्संग मिल जावे, तो फिर ये आपदाएं आप जी के जीव पर नहीं आएंगी। क्या बताया है, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार, कबीर नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारू खान, कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओहो, अपने आत्मा सतगुरु ना मिलने से, एक तो आम संत सतगुरु नहीं होते, सतगुरु वही होते हैं जो सच्चा नाम सतनाम बताते हैं। गुरु सोए सतनाम बतावे और गुरु कुछ काम न आवे, गुरु सोए सतनाम बतावे, सतगुरु वही है जो सतनाम सच्चे नाम का ज्ञान कराता है, सतनाम देता है, सच्चा नाम देता। सतनाम सतनाम ये कोई नाम नहीं है, सतनाम का अर्थ सच्चा नाम, यथार्थ भक्ति विधि। और ओ जो सतनाम नहीं देते, सच्चा नाम जो दो अक्षर का होता है जिसमें एक ओम मंत्र होता है, एक गुप्त है, ये दासी बताएगा है उपदेशी को, ये दो मंत्र का सतनाम होता है। और जो गुरु सतनाम नहीं बता पाते और उनको अधिकार नहीं है बताने का, तो वो किसी काम नहीं आएंगे, वो व्यर्थ है। अब क्या बताते हैं कि मानुष जन्म मिला और सतगुरु नहीं मिले, ये नकली गुरु मिल गए, डुप्लीकेट संत, नाम धराम परम धनी और महामंडलेश्वर आचार्य 1008 पता नहीं के फीत लगावे सरस्वती फलाना, और उनको कह कहेगा पता नहीं। तो ऐसे नकली संतों ऋषियों के अज्ञान से पुण्यात्मा अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। अब प्रसन्न चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। पुण्यात्माओं, सतगुरु का बहुत महत्व है। गुरु, वैसे तो गुरु शब्द ही पर्याप्त है, लेकिन ये नकली गुरु हो जाने से सतगुरु कहना आवश्यक हो गया। सतगुरु का अर्थ होता है जो सच्चा ज्ञान दे, सच्चा मार्गदर्शन करे, उसको सतगुरु कहते हैं। ये झूठे गुरु ज्यादा होने से सतगुरु का शब्द का प्रयोग करना पड़ा। ऐसे झूठे नाम बहुत लोग देते हैं, इसलिए सतनाम का सतनाम कहना पड़ा, सतनाम हो सच्चा नाम। गीता जी 10:8 के श्लोक नंबर 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण और ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरा एक ओम नाम है, एक अक्षर ओम है, और जो मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है जो इसको अंतिम श्वास तक ये प्रयाति तजन देहम
शरीर छोड़ते समय तक जो इस ओम नाम का जाप करता है, सयाति परमाम गतिम, वो इस ओम नाम से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावृत्ति में हैं। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है कि उनमें गए हुए प्राणी भी, ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी, साधक भी पुनः लौटकर संसार में आते हैं, यानी उनके भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। पुण्यात्माओं, वर्तमान में हम इतने भ्रमित हो गए कि जब तक हम प्रमाणों को प्रत्यक्ष नहीं देख लेंगे हम मान नहीं पाएंगे। ये देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोयंदका और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये है जयदयाल गोयंदका, ये इनके हाथ से लिखा हुआ इसके बारे में जानकारी है। गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 दिखाते हैं आपको, अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, बस ओम, तो इसलिए इसको एक अक्षर बोलते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का यह ओम एक अक्षर है, उच्चारण करते हुए स्मरण करने का, और यह प्रयाति तजंदेहम, उच्चारण करता हुआ, जिसका उच्चारण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है इसका स्मरण करता हुआ, सयाति परमाम गतिम, वो ओम नाम से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। ठीक है, अब इन्होंने इसका अनुवाद ये किया है, यहां से शुरू किया है, ओम ये माने जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का, मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओम नाम से मिलने वाली परम गति क्या है ये देखिएगा, ये यहीं पर 8वां अध्याय 16वां मंत्र है। ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। यहां देखना, पुनरावर्ती का अर्थ है जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे ये पुनरावर्ती, यानी वहां ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक भी जाकर के वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होता है। यहां इन्होंने इसका अनुवाद गलत किया है, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है, व्याख्या ठीक है। अब ये ब्रह्म बोल रहा है गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके, इसका अर्थ है ब्रह्म भोनाथ लोका पुनर्वर्तिना अर्जुन माम उपेतु मुझे प्राप्त होकर, ये इसका अर्थ है परंतु मुझे प्राप्त होकर तो कौनते पुनर्जन्म होते हैं, पुनर्जन्म होता है न विद्यते, जो ये नहीं जानते, विद्य माने जानना भी होता है, जो इस बात से परिचित नहीं है तो वो मुझे प्राप्त होकर भी, मेरा जो ओम नाम है इसका जाप करते हुए मुझको प्राप्त होकर, ये इन्होंने अनुवाद गलत किया है। यदि यहां ये कहता कि मुझे प्राप्त होकर, परंतु मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के, ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 तक, ये गीता ज्ञानदाता ये नहीं कहता कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5,
यहां से ये यहां है। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे सीधे गीता ज्ञान दाता के भी जन्म और मृत्यु होते हैं। तो ये कहना कि मेरे को प्राप्त होकर जन्म मृत्यु नहीं होता तो वो अनुवाद गलत है, व्याख्या ठीक है। अब चौथे का नौवें में क्या लिखा है, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इसका सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता के जन्म तो होते हैं लेकिन वो दिव्य हैं, वो दास बताएगा बाद में समय आने पर। अब हम इतना ही लेंगे गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, ये ना सोच के हम अभी हैं, पहले नहीं थे। अध्याय नंबर 2 और ये श्लोक मंत्र नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इति सिद्धम के गीता ज्ञान दाता का जन्म मृत्यु होता है। और यहां देखो 17वें श्लोक में दूसरे अध्याय के अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 17 गीता ज्ञान दाता कहता है, नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दर्श वर्ग व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यहां ये अर्थ गलत किया है, इसे सीधे गीता ज्ञान दाता स्वयं भी नाशवान है। यह देखिए गीता अध्याय नंबर 8 के अब श्लोक नंबर 16 को पुनः पढ़ेंगे जब बात समझ पाओगी। हे अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत यानी ओम नाम का जाप प्राप्त करके जो ब्रह्म लोक में जाते हैं, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोक, ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावर्ती में है, जिन वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होता है, 84 लाख योनियों में भटकते हैं। और ये कहना कि परंतु मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है, ये व्याख्या ठीक है। तू मन परंतु माम उपेत

0: हग करें, विधिवत बताता है वह तत्वदर्शी संत है। तो तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके द्वारा बताए गए ज्ञान के आधार से सत भक्ति करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।
3: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
2: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
4: पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
0: जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी वो गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है, उसके लिए 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणः तिर्विद समर्थः।

ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म यानी उस पूर्ण परमात्मा का जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, उस परमात्मा उस परम अक्षर ब्रह्म सचिदानंद घन ब्रह्म कहो चाहे उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, उस सचिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म के पाने का केवल एक ओम तत् सत ये तीन मंत्र का जाप है, इसी के जपने का निर्देश है, नथिंग एल्स। और इसकी तीन विधि है, तीन प्रकार से सिमरन होता है, वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा इस तीन मंत्र के जाप को। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है गीता ज्ञान दाता ने कि जो व्यक्ति जो साधक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान पर आश्रित हो जाता है, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो फिर उस तत्ब्रह्म से और सारे ध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, फिर वो व्यक्ति जरा और मरण से छुटकारा पाने का ही यत्न करता है, फिर ये इस संसार की कुछ भी वस्तु डिमांड नहीं करता। वो फिर जरा और मरण, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था यानी सबसे खतरनाक दुख है इस प्राणी पे, और फिर मृत्यु। आज हम अपने बाल बच्चों में किस प्रकार सेट हैं, और एक सेकंड में ना जाने के बिजली गिर जाए, बच्चे मर जाए, हमारी ये मृत्यु हो जाए, एक सेकंड का भरोसा नहीं। तो ये मौत, बच्चे मर गए तो टक्कर मारनी पड़ेगी हमने, हम मर गए तो हमारे बच्चे रोएंगे टक्कर मार मार के। कहते हैं वो फिर ये मृत्यु कितनी बुरी वस्तु है, और सतलोक सचखंड में अभी आपने सुना वहां जाने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में। और वहां ऐसी ही सृष्टि है सतलोक के अंदर, जो सतलोक के अंदर कुछ नहीं बताते, वो झूठा ज्ञान कूड़ा ज्ञान प्रचार करते हैं, वहां ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही वहां शरीर है, लेकिन मेटेरियल ऑफ शरीर इन बॉडी का अंतर है। यहां तो मिट्टी से बने हुए हैं, पांच तत्वों से बने हैं, और वहां एक नूरी तेज तत्व से बना हुआ शरीर है, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, वो किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसके बारे में आपने 7वें अध्याय 29 में श्लोक में कहा है। तो उसके विषय में 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 29 दिखाते हैं आप, अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये, मेरे आश्रित होकर जो जरा और मरण के मोक्ष यानी छुटकारे के लिए ही यतन्ति प्रयत्न करते हैं, वे ते ब्रह्म तत्विदु, वे तत्ब्रह्म, ब्रह्म तत् कहो चाहे तत्ब्रह्म को, उस तत्ब्रह्म को जानते हैं, और कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम, अखिलम माने सारे कर्म को, कर्मों से परिचित हैं और सारे अध्यात्म से वो परिचित हैं, जो उस तत्ब्रह्म से भी परिचित हैं जो केवल जरा और मरण के छुटकारे के लिए ही साधना करते हैं, यहां कोई छोटी मोटी डिमांड नहीं रखते परमात्मा के सामने, वो समझ चुके हैं। कोट जन्म तन भर मत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खर बया बोरे कौआ हंस बुगारे, कहते वो समझ चुके हैं। यह अनुवाद है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का इन्हीं के द्वारा। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण, जरा मन वृद्ध अवस्था बुढ़ापा छुटने के लिए यत्न करते हैं, वे व्यक्ति तत् माने उस ब्रह्म माने ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, वे तत् ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं,
और तीस में क्या, ये तीस अंतिम है, सात में जाएगा। जो पुरुष अधिभूतम और अधिदेव, अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझ को अंत काल में भी जानते हैं, वे व्यक्ति युक्त चित वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं, वो केवल मेरे तक ही सीमित हैं। या खत्म हो गए, ये सातवां अध्याय यहां समाप्त हो गया। अब ये आठवां यहां शुरू होता है, अष्टमा अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र में ही अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते, हे पुरुषोत्तम तत्ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। इसका उत्तर दिया है इस आठवें अध्याय के तीसरे मंत्र में गीता ज्ञानदाता ने बताया है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्ब्रह्म जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। इसे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता से कोई और परमात्मा, अन्य भगवान है, जिसके जानने से, जिसकी साधना करने से, और उसका ओम तत् सत, ये तीन मंत्र है। ओम तो सीधा ही है, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा। ओम तत् सत ये कोई मंत्र नहीं है, ये अनाड़ी और ये डुप्लीकेट संत, ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत, इस तरह बना रहे हैं आपको मूर्ख बना रहे, ये मंत्र नहीं है। अब इसमें आठवें अध्याय के तीसरे मंत्र में आपको स्पष्ट हुआ कि वो परम अक्षर ब्रह्म। अब गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, और ये परम अक्षर ब्रह्म अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी है, और वहां उसके सतलोक सचखंड शाश्वत स्थान में सनातन परम धाम में जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, जरा मरण समाप्त हो जाता है, वहां सदा युवा रहते हैं, सतलोक के अंदर वृद्ध अवस्था नहीं आती, सदा युवा रहते हैं और मृत्यु कभी नहीं होती, जरा और मरण वहां जाकर मिटता है। अब यहां दो भगवान चलते हैं, दो प्रभु, दो स्वामी। ब्रह्म तो केवल किस ब्रह्मांड का स्वामी है, स्वामी है, भगवान है, प्रभु है, और ये परम अक्षर ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांड का, असंख्य बिना गिनती के, यानी ओवरऑल कंट्रोलर है। अब ये ब्रह्म कहता है मेरा ओम नाम है, आठवें अध्याय के तेरहवें श्लोक में, मेरी भक्ति करोगे तो मेरे पास रहोगा, और उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना करोगे तो उसके पास चले जाओगे, वहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। गीता के अध्याय नंबर आठ के और श्लोक नंबर पांच से लेकर दस तक कति निर्णायक ज्ञान है। पांच और सात श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति कर, तू युद्ध भी कर, मेरे पास रहेगा, ब्रह्म लोक में आ जाएगा, मेरी प्राप्ति यानी ब्रह्म लोक को मिल जाएगा, मेरे ओम नाम से मिलने वाली जो गति है वो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मेरे और तेरे जन्म मृत्यु सदा बने रहेंगे, पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। गीता जी अध्याय नंबर आठ के श्लोक नंबर आठ नौ दस तीन श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी दी कि उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर आठ के और श्लोक नंबर आपको आपने तीन देख लिया, तीन तो भी देख लिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म। अब यहां आ जाते हैं इसी पृष्ठ पे, ये पांचवा श्लोक है। जो पुरुष अंत काल में भी मुझ को श्रवण करता हुआ श्री त्याग कर जाता है, यानी ओम नाम का जाप करता हुआ जो श्रवण करके जाता है, तो वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है। यहां मेरे साक्षात स्वरूप को नहीं, ये अनुवाद गलत किया है, मद भावम याति, वो मेरे में भावित रहता है, मेरे पर उसकी श्रद्धा बनी रहती है, तो इसमें कोई संशय नहीं। आगे देखना, अब छठे में इसका, छठे में भाव का क्लियर होगी। हे कुंती पुत्र, अंत काल में, यानी यहां निर्णय दिया है कि अंत काल में जो जिस भी इष्ट की पूजा करता हुआ जाता है उसी के भाव में भावित रहता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में
जिस भी भाव को समण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, यानी उसी उस भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा तद भाव भावती भावित, वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। यहां यही है कि जैसे जो मेरा स्मरण करता है वो मुझ में भावित रहता है, मुझ में, यहां इसने मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, गलत किया है पांचवें में कि जो पुरुषंत काल में मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे, यहां मेरे साक्षात रूप को नहीं, वो मेरे भाव में भावित रहता है, मेरे में ही उसकी श्रद्धा बनी रहती, इतना लिखना है, इसमें संशय नहीं है। छठे में इस भाव को क्लियर कर दिया है कि जो एक नियम है कि जो भी अंत समय में, यानी जो सारा जीवन जिसकी भावना भावित रहेगा अंत में भी उसी में भाव रहेगा। एक कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है, क्योंकि उसमें उसकी श्रद्धा रहती है, यानी ब्रह्म की साधना करता है तो ब्रह्म को प्राप्त होता है, और परम अक्षर ब्रह्म की करता है तो उसको, जो उसकी साधना करता है उसमें भावित रहता है। अब पांचवें में कहा मेरी मसलता करता मुझ में भावित रहता है, और सातवें में कहा है कि इसलिए सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। आगे देखना है, ये यहां तक इसकी चैप्टर खत्म हो गया ब्रह्म गीता ज्ञानदाता का ब्रह्म का। और आठवें में कहा है अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतन। क्या बताता है गीता ज्ञानदाता कि हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के उस परम अक्षर ब्रह्म के ध्यान नहीं, अभ्यास योग युक्तेन, हम संस्कृत भी पढ़ेंगे तभी निर्णय होगा, अभ्यास योग युक्तेन यानी जो सतगुरु ने, सच्चे गुरु ने जो मंत्र अभ्यास का दिया है नाम का, उसका अभ्यास करते हुए दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी किसी ओर में आस्था ना रखे, निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्यम पुरुषम, पुरुष माने परमेश्वर भगवान प्रभु, और परम दिव्य उस अद्भुत, दिव्य माने अनोखा अद्भुत, यानी परम अक्षर ब्रह्म, यहां समझो इस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है कि वह परम पुरुषम, वह परम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है, वो परम दिव्यम पुरुष, परम अक्षर पुरुष, ये परम ये समझ लो, वो परम अक्षर ब्रह्म, पुरुष माने ब्रह्म कहो परमात्मा कहो कुछ भी कहो, पुरुष माने परमात्मा, और मनुष्य को पुरुष इसलिए कहते हैं परमात्मा मनुष्य जैसा ही है, इसलिए मनुष्य को अपना स्वरूप उसने दिया है तो वो मनुष्य को भी पुरुष कहने लगे। परमम दिव्यम पुरुषम याति, वह परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम दिव्यम पुरुष कहो, या परम दिव्य परमेश्वर कहो, को प्राप्त होता है। अब नौवे में यहां लिखा कव्यम पुराणम अनुशासिताराम अणो अनिशासम अनुसमरेत ये सर्वस्य धाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण माने सूर्य की तरह साकार चम तेजो में तमस्य प्रस्तात, इस अज्ञान रूपी अंधकार से बिल्कुल परे जो कोई नहीं जानता उसको परमात्मा ही आकर बताते अपने दिव्य बारे में। जो पुरुष, अब यहां इसको ज्यादा डिफाइन ना करें तो यह ठीक रहेगा, क्योंकि यहां कव्यम शब्द का कुछ और बनेगा, फिर भी हम आपको प्राथमिक ज्ञान में इसको यही ऐसे ही लेंगे तब आपके समझ में आएगी। जो पुरुष सर्वज्ञ, वैसे कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता, इसका अर्थ सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता,
यहां पर सीधा अर्थ बनता है वो कबीर देव। जो कबीर देव है वो अनादि है, सबका नियंता है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, सबके धारण पोषण करने वाला है और अचिंत स्वरूप है, और सूर्य के सदृश नित चेतन स्वरूप है, यानी सूर्य की तरह साकार तेजो में शरीर युक्त है, अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है। देखो जो व्यक्ति उस अनादि पुरुष परमात्मा जो सबका धारण पोषण करने वाला है, अचिंत रूप है, सूर्य की सदृश साकार चेतन है, सूर्य सदृश है तेजो में शरीर युक्त है, अविद्या से अति परे है सच्चिदानंद, उस परमात्मा का श्रवण करता है। अब दसवें में आठ नौ दस उसी परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये दसवां श्लोक, वह भक्ति योग पुरुष अंत काल में योग बल से, यानी भक्ति योग बल माने साधना की शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, मंत्र के बल से, बैरकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, क्योंकि सांस का सिमरण होता है और सांस के सिमरण से जीव ऊपर चलेगा, और फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्यम परम पुरुषम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है, यह परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, जो दास आपको इस सत्संग आज का समझाना चाह रहा है, अभी तक तो इसकी भूमिका बन रही है, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी, कबीर चार खानी में भरमता कभू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। अब एक बहुत ही अजीब और गरीब उदाहरण है जो आसानी से हमारे हृदय में समा जाएगा, लेकिन पुण्यात्माओं ये तो एक विद्यालय है, ये वो विद्यालय है जो आपको परमात्मा प्राप्ति कराओगा, ये वो कॉलेज है, ये वो यूनिवर्सिटी है जो आपको परमात्मा प्राप्ति कराओगा। और जब तक विद्यार्थी कॉलेज विद्यालय में जाता है तो उसने अपना चैप्टर अपना सब्जेक्ट रह रहकर उसका रिमाइंड करना पड़ता है और तभी वो सफल होता है। तो जब तक आप यहां हो इस पृथ्वी लोक पर, तब तक अंतिम श्वास तक आप जी को सिमरण भी करना है, स्मरण करना है, जो मंत्र आपको दिया जाता है, और साथ में ये स्वाध्याय और ये ज्ञान ये भी आपने श्रवण करते रहना होगा। ये एक नियम है, इसको बार बार करना पड़ेगा। जैसे हम रोटी रोज खाते हैं, अंतिम सांस तक ही रोटी खानी पड़ेगी जब तक शरीर छूटेगा, और जिस दिन रोटी अच्छी नहीं लगती है, सुबह खाई है और शाम को अच्छी नहीं लग रही है, तो समझ लो आप शरीर में आप जी के कोई गड़बड़ होगी, तो उसका ट्रीटमेंट है कि ना चाहते हुए भी गोलियां खानी पड़ा करें। जैसे गेहूं की रोटी वही होती है, सुबह भी शाम भी, सब्जी का फेरबदल थोड़ा बहुत हो सकता है, और सही भूख जिसको लगी है, सब शरीर है, सब्जी हो ना हो रोटी मिल जाए, लुखी सुखी भी खा जाए मिर्च के साथ में, तो ऐसे जब तक आपकी भक्ति सही चल रही है, आपके ऊपर कोई पापक्रम का दबाव नहीं बना है या आपका नाम खंड नहीं है, तो आपको ये वचन ऐसे नहीं लगेंगे कि ये तो पहले भी सुना था, और ऐसा आता है तो फिर कोई ना कोई गड़बड़ आपकी आत्मा में हो चुकी है, तो उसको सेट यही, उसका अर्थ यही है, उसका ट्रीटमेंट यही है, ना चाहते भी सुने। जैसे बुखार हो जाता, किसी को जबर हो गया और जबर होने से भूख ना लगती, भूख तो लगती है कोई ना, रोटी तो अच्छी कड़वी लगन लगी, लेकिन कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी। तो इसी प्रकार आप जिन ये सत्संग
जितनी बार भी सुनो आनंद आना चाहिए, क्योंकि भगवान की चर्चा इस पृथ्वी पर ढूंढ ही नहीं पावे। कहीं और सत्संग सुनते हो तो सत्संग नहीं है, बेशक चर्चा मालिक का नाम जोर से लेते हैं, लेकिन वहां सारा अज्ञान प्रवेश किया जाता है। तो यह और न्यारी खुशी, तो अंतिम श्वास तक जैसे शरीर को अन्न की आवश्यकता होती है, रोटियों की आवश्यकता है, आहार की आवश्यकता है, ऐसे ही सात्मा को अंतिम श्वास तक ही सत्संग की भी आवश्यकता और सिमरण की आवश्यकता है। तो हम जो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जैसे ऋषि महर्षि जी साधनाएं करते थे और ऐसी कठिन साधनाएं उन्होंने की, ऐसे प्रयत्न किए, इतनी जबरदस्त तरीके से किया, ओम नाम का जाप भी करते थे, पहले मंत्र ही एक होता था। यह तो कलयुग में बात बिगाड़ दी नकलियों ने, पहले एक ही मंत्र होता था ओम नाम, वेदों अनुसार साधना करते थे ये लोग, क्योंकि इन्होंने वेदों को स्वयं ही जाना, संत नहीं मिला इनको, तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जिस कारण से इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखे हुए ओम के मंत्र को पूर्ण परमात्मा का जान लिया। उसमें लिखा है कि ओम कर्तु समर किल्वे समर कर्तुम समर, अंतिम श्वास तक भस्मांतम शरीरम, शरीर छूटने तक इस ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण कर, अपना दैनिक क्रिया करते हुए जिसका भी जैसा व्यवसाय उसमें ही, यानी घर छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं किसी जंगल में, काम करते करते श्रवण कर विशेष कसक के साथ, हृदय मेनु गुदगुदी सी उठे भगवान के भजन के लिए, एक उमंग सी उठे कसक के साथ, और मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर इसको प्राथमिकता दे, एक नंबर पर लावस भक्ति वाले काम ने। अब हमने रोजगार वाला काम तो एक नंबर पर कर रखे, 8-8 घंटे 9-9 घंटे काम करते हैं, और परमात्मा वाला हमने गेर रखा, टाइम लग गया तो कभी मंदिर में चले जाया करते, मंगलवार ने प्रसाद बांट दिया है, कोई व्रत रख लेते, ओम जय जगदीश श्री आरती याद आ जाती तो वह गुणगुना लेते। तो हम ऐसा काम चलाओ सा इसको समझ रहे थे, रिजेक्टेड सा नहीं, अब इसको एक नंबर पर लाना अपन, फिर संसारी काम भी ठीक होंगे। तो ऐसे उन लोगों ने जिन्होंने स्वयं ही वेदों को जाना और समझा, सतगुरु मिले नहीं, उन्होंने ओम नाम के जाप को अंतिम मान लिया, और जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे, सर्वप्रथम जब इनको होश में लाया गया इस काल भगवान ब्रह्म के द्वारा, तो ये कमल के फूल पर बैठा था जब आकाशवाणी की इस ज्योति निरंजन ने, अर्थात इस ब्रह्म ने, सर्वपुरुष ने कहा कि तप करो तप करो। ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, तो बाद में वेद मिले इनको, ब्रह्मा विष्णु महेश को, जब इन्होंने सागर मंथन किया, तो वेदों में तो ओम नाम और आकाशवाणी मान ली परमात्मा की, ब्रह्मा जी ने कि परमात्मा ने आकाशवाणी की थी तप करो, तो उधर से तो आकाशवाणी से तो ले लिया तप, वो आकाशवाणी तो थी काल की ब्रह्म की, और वेदों का ज्ञान दिया परम अक्षर ब्रह्म ने, इस ब्रह्म के अंतःकरण में, इसके कंप्यूटर में फीड कर दिया, इसके मोबाइल में फीड कर दिया, फैक्स कर दिया, और वो ही बाहर इसने निकाल दिया एज इट इज, और उधर से इसने अपनी अटकल के और अलग प्रकार के कई उपनिषद आदि गढ़वा दिए, और आकाशवाणी इसने अपना ज्ञान ठोक दिया। तो इन ब्रह्मा जी के बाद ही सभी ऋषियों ने ब्रह्मा जी से ज्ञान ग्रहण किया। तो ओम नाम तो वेदों से और आकाशवाणी वाली वो तप, इन दोनों का खिचड़ी बना ली इन्होंने। तप भी हठ योग भी करने लायक है, जबकि वेदों और गीता जी में हठ योग को मना किया है, ओनली मंत्र जाप करना, नाम जाप करना, काम करते करते, जैसे आपने अभी 8वें जाके 7वें श्लोक में पढ़ा, ये ब्रह्म कहता है कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण कर ओम नाम का, युद्ध से कठिन कोई काम नहीं होता, और उसमें भी भगवान को याद रखना बताया। तो काम करते करते हठ योग नहीं किसी उसमें लिखा है शास्त्रों, तो हठ योग इस काल ने अलग से ठोक दिया। तो इन ऋषि महर्षियों ने हठ योग साथ में किया, ओम नाम का जाप किया,
जिस कारण से ये काल के जाल में ही फंसे रहे, जन्म और मृत्यु के चक्कर में ये फंसे रहे, ये पार नहीं हो सके, इनकी दुर्गति ज्यों की त्यों बनी रही।

0: सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 86।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानि 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दियां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2332 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दी सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंड

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब ते आवह सब ते आवह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ते आवह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाओ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ते आवह हर ते आवह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी तिन का भौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत सास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे सृष्टि सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सब नी त्याया जिसनों कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया
तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोय। तू कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरण पई ले निवासा, पानी पावक तिन है किया। पंक जो मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेतस मूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा पई परापत मानुख देहरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै। रहाओ जप

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन कौ आज संगरियै। पूरन होए हमारी आसा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारी, साहिब संत सहाय प्यारी। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बापुतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशानै, काट काट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी।
कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगर हो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलीश करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहि उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा।

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तो हे बखाने ओ दोहरा

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दो ता गावह हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा सब ना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुन हो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे

लागे वाजे आन हद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होय उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर धारो तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो सलो

रहाउ रसना रमत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई कहो पीखन दोय नैन संतोखे जह देखा तह सोई रसना रमत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई।

0: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तना श्री महला पहला, आरती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
1: कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
3: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
4: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।